हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्रीराम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्रीराम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्रीराम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे, श्रीकांत पारगांवकर और साथ ही हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में इस भक्तिमय गीत से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्तिमय रचना। आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में ये रचना।

श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। और अब आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में ये भक्तिमय गीत।

महेंद्र कपूर के स्वर में इस भक्तिमय गीत के साथ ही हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण अब यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकेंगे सुभाषिष मित्रा के स्वर में संगीत रचनाओं का। सवेरे 7 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। सवेरे 8 समाचार प्रभात का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे सवेरे 8:15 पर। श्रोताओं, आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार होंगे सवेरे 8:30 पर। सवेरे 8:40 पर सुनिएगा हमारे केंद्र से प्रसारित लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इसमें आज आप आनंद ले सकेंगे खोरठा लोकगीतों का, कलाकार होंगी करुणा कुमारी और साथी। श्रोताओं, सवेरे 9 सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। सवेरे 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा दिन के 10:00। उसके बाद आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण सुनिएगा दिन के 10:30 से। दोपहर 1:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। दोपहर 1:20 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण सुनिएगा। दिन के 2:55 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। दिन के 3 सुनिएगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। शाम 4 मुख्य समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। यहीं से अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण होगा शाम 4:02 पर। और शाम 5 सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से ही। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम विवरण शाम 5:02 पर। शाम 5:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे युगल गीत। शाम 5:30 पर सुनिएगा हमारे किसान भाइयों और किसान बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें चर्चा का विषय होगा किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी। मनोरंजन कीजिएगा संथाली लोकगीत से शंकर चंद्र मुर्मू और साथियों के स्वरों में। मौसम की जानकारी सुनिएगा और साथ ही भेंट वार्ताओं के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वस्तुओं के बाजार भाव की जानकारी सुनिएगा, साथ ही आनंद लीजिएगा कुरमाली लोकगीत का रीना महतो और साथियों के स्वरों में। श्रोताओं, शाम 6 मुख्य समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग शाम 6:02 पर।

संथाली कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 पर, शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। श्रोताओं, शाम 7:10 पर सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, विषय साइंस एंड टेक। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। श्रोताओं, उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा शाम 7:45 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम रजनीगंधा होगा शाम 8 बजे। शाम 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9 बजे। उसके बाद आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण सुनिएगा रात्रि 9:15 से। रात्रि 10 बजे हमारे केंद्र से सुनिएगा गज़लों का प्रोग्राम महफिल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग होगा रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं सुभाषिश मित्रा के स्वर में संगीत रचनाओं का। सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे हैं सुभाषिष मित्रा के स्वर में भजनों का। अब आइए सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे सुभाषिश मित्रा के स्वर में भजनों का। हम आकाशवाणी के चाईवासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईवासा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चायबासा में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म का नाम है इश्क इश्क इश्क, इश्क।

जोहार चायबासा कार्यक्रम का ये पहला गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था इश्क इश्क इश्क। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चायवासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर और अपने रेडियो दोस्त उदयपान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आनंद।
1: मैंने

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म देशवासी का गीत नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: और अब आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

0: श्रोताओं, ये था फिल्म लवर्स का गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। और अब आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: परिवार जो तो बेटा क्रांति बेसरा नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुआना धारा आम बोले रुआड़ तबन में अल परिवार से मतलब पूरे ये
4: मंगलोर को गाँव बारगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउका कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे भक्तो था तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए
6: तुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भूरूपा सेना करना ऐसे दुख रहे ना अन्य यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
7: अन्या मतलब बुंबई कोड़ा पटन मतलब गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन मतलब कितमई कोड़ा मैंने मैं उड़ी उड़ी ने बागिया तोड़ के जिन दोनों से यार थी कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तो मैं दूर रहने को यहाँ तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बको को काको मेरे लिए
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना मिले आप ही लेता ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर

0: 7800088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अपने रेडियो दोस्त उदयपान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब ये सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है नूर जहां।

और अब श्रोताओं आइए बात करते हैं उनकी जिनकी बदौलत देश सुरक्षित है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के वीर जवानों की, जो गर्मी, बरसात, ठंड या किसी भी तरह की प्रतिकूल परिस्थिति में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं ताकि हमारा देश और हम सब देशवासी सुरक्षित रहें। श्रोताओं, हमें अपने देश के सैनिकों के बलिदानों को हमेशा याद रखना चाहिए कि किस तरह से अपना सर्वस्व बलिदान देकर भी उन्होंने

देश की सेवा की है और प्रतिक्षण देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे इन सैनिकों को हमारा कोटि कोटि नमन। और अब आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत मुकेश और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हम हिंदुस्तानी।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन और साथियों की आवाज़ों में अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये गीत है।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me please,
0: my name is Anthony Gonsalves.
2: How cute,
0: right?

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया है समाचारों का। समाचारों के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर
1: कमाई का एक और साधन देना चाहता।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
4: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरेखित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके

0: सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
0: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10.82 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10.55 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1.12 करोड़ से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमूज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
4: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
5: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है, उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम, आज से 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
7: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure, convergence, partnerships and data-driven systems alongside a structured mechanism to track short, medium and long-term outcomes ensuring accountability and measurable impact. A key thrust will be on aligning state visions with the national vision on inclusive human development, reinforcing a unified and collaborative approach towards equitable and sustainable growth. The Governing Council of Niti Aayog will also focus on the recommendations of 5th National Conference of Chief Secretaries held during 26th to 28th December last year. With Anupam Misra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
6: Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace. Mr. Modi said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
8: NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai ki hamari neetiyan sahi hain, hamari disha sahi hai. Ye safalta आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
6: In his address, the Prime Minister said that at a time when the economies of major countries around the world are struggling, India has still achieved a growth rate of 7.7% in 2025-26. He said the country has moved out of the fragile 5 category and has now become one of the fastest growing economies in the world. Earlier yesterday, the National Democratic Alliance adopted a resolution lauding Mr. Modi on achieving the feat of becoming the country's longest-serving elected Prime Minister. BJP President Nitin Naveen has said that a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave held at Bharat Mandapam in New Delhi. Speaking to the media, Mr. Naveen said the NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Narendra Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone, calling it a moment of pride for 140 crore people of the country. Mr. Naveen said, under Prime Minister Modi's leadership, India is moving forward towards the vision of Viksit Bharat. He added that the Prime Minister's guiding mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas has connected people across the country. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards the welfare of the poor. Over the past 12 years, the Narendra Modi government has implemented several flagship schemes for the welfare of the poor and to strengthen social security. Housing for the poor is the major focus area of the Modi government. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen, more than 4 crore houses have been allocated to states for economically weaker families in rural areas. In the area of food security, the government is providing free food grains to over 81 crore beneficiaries across the country under the Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Anna Yojana. Talking to Akashwani News, Indramani Nayak of Kalahandi in Odisha said that the poor people are benefiting through this scheme.
9: My name is Indramani Nayak. I belong to Kamthana Panchayat in Bhavani Patna, Kalahandi. Under the Garib Kalyan Anna Yojana that Narendra Modi has started, our family consists of 5 members and we are receiving 5 kg of grains per person. Earlier we used to face a lot of hardships, but now we are all living in peace and happiness.
6: The world's largest public health care scheme, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, is providing health coverage of 5 lakh rupees to vulnerable families, while Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras are offering generic medicines at affordable rates. Around 10 crore 82 lakh beneficiaries have availed cashless treatment under the Ayushman Bharat scheme. Talking to Akashwani News, Fayaz Ahmed of Baramulla, Jammu and Kashmir said that the Ayushman Bharat scheme is facilitating the poor to avail treatment during emergencies.
10: I am very grateful to the NDA government and Modi ji for launching so many schemes. For the first time in the country's history, a poor person has received direct benefits through digitalization. I would like to talk about Ayushman Bharat. What used to happen in the country earlier before Modi ji's government was that when someone fell ill, people either had to sell their land or some expensive household item to arrange money for operations and other treatment. But ever since Modi ji launched the Ayushman Bharat scheme, there is no longer the case across the country.
6: Over 10 crore 55 lakh women have been provided free LPG gas connections under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, freeing them from the health hazards of traditionally cooking fuels. Meanwhile, under the PM Swanidhi scheme, more than 1 crore 12 lakh loans have already been disbursed to street vendors so far. India's social protection coverage has risen sharply from 19% in 2015 to more than 64% in 2025, covering nearly 94 crore citizens under the government welfare schemes. Around 25 crore people have been lifted out of poverty, reflecting a significant shift towards inclusive growth and welfare-driven governance. With Dipendra Kumar, Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
0: This is Akashwani giving you the news.
6: For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखेंगे झारखंड का पक्ष। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में NH-33 एलिवेटेड कॉरिडोर का लिया जायजा, कहा 2027 तक पूरा होगा काम। स्नातक शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट का नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश, 30 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। राजधानी रांची, धनबाद और दुमका सहित 9 जिलों में आज से 14 जून तक तेज आंधी, बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची में शुरू हुई झारखंड T20 लीग में आज छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत धनबाद डायमंड से और रांची टाइटंस का मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। वे दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड का पक्ष मजबूती से रखेंगे। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में NH-33 फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सांसद विद्युत वर्ण महतो की मौजूदगी में हुए इस निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि वन विभाग की क्लियरेंस मिलते ही काम में और तेजी आएगी। यह परियोजना 2027 तक पूरी होगी, जिससे मानगो वासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।
2: एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से जाम की समस्या का निजात मिलेगा। पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि 26 के लास्ट में और 27 की शुरुआत में बनके चालू हो जाएगा। मात्र 1 किलोमीटर फॉरेस्ट क्लियरेंस राज्य सरकार नहीं दे रहा है, जिसके चलते परेशानियां हो रही है।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 मामले में राज्य सरकार की संशोधन याचिका स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 30 जून तय की है। साथ ही कैवियट दायर करने वाले पक्षकारों को याचिका की सॉफ्ट कॉपी देने का आदेश दिया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि एकलपीठ के आदेश में संशोधन के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के नए अध्यक्ष का गठन कर दिया गया है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा मद में 10 करोड़ 70 लाख का बजट जारी किया है। इसमें से 3 करोड़ 60 लाख राज्य के 6 प्रमुख मेडिकल कॉलेजों और राजकीय फार्मेसी संस्थान के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित है। बाकी राशि का उपयोग चिकित्सा संस्थानों में बिजली, पुस्तकालय, भवन मरम्मत, नए वाहनों की खरीद और बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्पदंश, एंटी रेबीज और अन्य जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए निर्देश दिए हैं। मौसम जनित बीमारियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखने और एक्सपायरी के करीब पहुंच चुकी दवाओं की खरीद पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। चतरा महिला महाविद्यालय में 7 दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम का समापन हो गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के इस संयुक्त कार्यक्रम में 60 शिक्षकों को भारतीय ज्ञान परंपरा और AI का प्रशिक्षण दिया गया। समापन पर कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि आने वाला समय विकसित भारत 2047 और एआई का होगा। उन्होंने घोषणा की कि अगले चरण में विश्वविद्यालय के 50 शिक्षक विशेष प्रशिक्षण के लिए बीएचयू जाएंगे और भविष्य में 1,00,000 छात्र छात्राओं को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी का नामांकन रद्द करने की मांग पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे संवैधानिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश करार दिया।
3: हमारे कार्यकर्ताओं को विधानसभा के गेट के बाहर रखने का काम किया वहाँ का प्रशासन ने और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब विधानसभा के अंदर घुसे। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। भेदभाव की राजनीति प्रशासन करना बंद करे। ये आरोप की जिम्मेवारी है कि बिना दबाव में आए जो सही है उसको सही करें, जो गलत है उसको गलत करने का काम करें।
0: इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन में कई त्रुटियां होने के बावजूद उसे रद्द नहीं किया गया। रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नेताओं ने निर्वाचन आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए इस मामले को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास ले जाने की बात कही।
4: मध्य प्रदेश में हमारे मीनाक्षी नटराजन जो उम्मीदवार थे उनको 15 मिनट में जब त्रुटि पाई गई तो उन्हें रद्द किया गया और यहाँ पर हमारे द्वारा जो आपत्ति की गई उससे 24 घंटा का समय दिया गया, उसमें कई त्रुटियां थी।
0: धनबाद के टाउन हॉल में झामुमो ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण सहकार्यशाला का आयोजन किया। केंद्रीय सचिव विनोद पांडे और टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को आगामी SIR और मतदाता सूची पुनरीक्षण की बारीकियां सिखाई गईं। विनोद पांडे ने बताया कि 30 जून से शुरू होने वाले इस अभियान से पहले बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और एजेंटों को प्रशिक्षित करना बेहद जरूरी था।
5: आने वाली जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना BLA 2 और बूथ स्तर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कैसे करेंगे, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। जो 30 तारीख से SIR की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो आप अपने बूथ पर किस तरह से मुस्तैद रहेंगे, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने बातचीत की।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य के 9 जिलों में आज से 14 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गुड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में कहीं कहीं तेज बारिश होने की आशंका है। इस मौसम बदलाव को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। रांची के JSCA स्टेडियम में झारखंड T20 लीग का रंगारंग आगाज हो गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले कल देर शाम भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चमचमाती ट्रॉफी का अनावरण किया। आज मैदान पर दो रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें पहले मैच में छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत धनबाद डायमंड से होगी जबकि दूसरे मैच में रांची टाइटंस का मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड से राज्यसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन वैध होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है कांग्रेस की आपत्ति खारिज, नाथवाणी मैदान में कांग्रेसियों ने धरना दिया तो भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंचे विधानसभा। दैनिक भास्कर ने लिखा है 4 में से जिन 3 नामों पर लोकभवन को थी आपत्ति वही बनाए गए सूचना आयुक्त। हिंदुस्तान के शब्द हैं, जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड अब सीओ के डिजिटल हस्ताक्षर से होंगे प्रमाणित। दैनिक जागरण लिखता है 108 एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही पर दो चिकित्सा पदाधिकारी निलंबित। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखेंगे झारखंड का पक्ष। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में NH-33 एलिवेटेड कॉरिडोर का लिया जायजा, कहा 2027 तक पूरा होगा काम। स्नातक शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट का नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश, 30 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। राजधानी रांची, धनबाद और दुमका सहित 9 जिलों में आज से 14 जून तक तेज आंधी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची में शुरू हुई झारखंड T20 लीग में आज छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत धनबाद डायमंड से और रांची टाइटंस का मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8:43 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं। खोरठा लोकगीतों का कलाकार हैं करुणा कुमारी और साथी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक, और आज इस कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे हैं खोरठा लोक गीतों का करुणा कुमारी और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं समाप्त होता है। आज आप आनंद ले रहे थे खोरठा लोकगीतों का कलाकार थीं करुणा कुमारी और साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे खोरठा लोकगीतों का कलाकार थी करुणा कुमारी और साथी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर, और प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त उदय पान। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे कार्यक्रम भी आप लगातार सुन रहे होंगे। श्रोताओं, आज 11 जून है और आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। जी हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2026 बच्चों के विकास, उनके अधिकारों और जीवन में खेल कूद के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण वैश्विक उत्सव है। श्रोताओं, ये दिन हर साल आज के दिन यानी कि 11 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में ये श्रोताओं, इसकी जो आधिकारिक थीम है वो है प्रोटेक्ट प्ले, प्रोटेक्ट चाइल्डहुड, यानी कि खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। श्रोताओं, इसका सीधा संदेश है कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तभी सुरक्षित रहेगा जब हम उनके खेलने के समय और आज़ादी की रक्षा करेंगे। श्रोताओं, सवाल उठता है कि इसे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है। श्रोताओं, पहले खेल कूद को केवल मनोरंजन माना जाता था, लेकिन इसके गहरे महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इसे वैश्विक मंच दिया। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर एक प्रस्ताव पारित कर हर साल 11 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाने की घोषणा की। श्रोताओं, इस दिन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में यूनिसेफ, पेरेंटिंग पोर्टल, यूनेस्को और राइट टू प्ले जैसी संस्थाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। संयुक्त राष्ट्र और बाल विशेषज्ञों के अनुसार खेल केवल मौज मस्ती नहीं है, बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास का आधार है। खेलों से बच्चों में रचनात्मकता, समस्या सुलझाने की क्षमता और शारीरिक मजबूती आती है। ये बच्चों के तनाव को कम करता है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाता है। आपस में मिलकर खेलने से बच्चे टीम वर्क, सहानुभूति और बातचीत करना सीखते हैं। दुनिया भर में लगभग 16 करोड़ बच्चे खेलने या पढ़ने के बजाय बाल श्रम करने को मजबूर हैं। यदि न ऐसे बच्चों को उनका बुनियादी हक दिलाने की याद दिलाता है। श्रोताओं, दुनिया भर के शहर और स्थानीय सरकारें बच्चों के लिए सुरक्षित पार्क, खेल के मैदान और कम्युनिटी इवेंट्स आयोजित करती हैं। स्कूल

इस दिन बच्चों को बिना किसी पढ़ाई के दबाव के सिर्फ खेल कूद और रचनात्मक एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं। श्रोताओं, आज के दौर में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले गाइडलाइंस माता पिता को प्रोत्साहित करती हैं कि वे बच्चों को मोबाइल या टीवी स्क्रीन से दूर रखकर शारीरिक और सुरक्षित ऑनलाइन खेलों की तरफ मोड़ें। तो श्रोताओं, हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। श्रोताओं, आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 जून है और आज के दिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी बातें। श्रोताओं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके लिखे सरफरोशी की तमन्ना जैसे अमर गीत ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई है और अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी के लिए वो चिंगारी छेड़ी जिसने ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन के भवन को लक्षागृह में परिवर्तित कर दिया। श्रोताओं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में हुआ। इनके पिताजी का नाम पंडित मुरलीधर था और श्रोताओं, संभवतः ये बताया जाता है कि बिस्मिल जी का जो नन्हिया हाल रहा है मैनपुरी, वहाँ इनका जन्म हुआ। श्रोताओं, अगर हम बात करें इनकी शिक्षा की तो 7 वर्ष की अवस्था हो जाने पर बालक रामप्रसाद को पिता पंडित मुरलीधर घर पर ही हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराने लगे। उस समय उर्दू का बोलबाला था, अतः घर में हिंदी शिक्षा के साथ ही बालक को उर्दू पढ़ने के लिए एक मौलवी साहब के पास मकतब में भेजा जाता था। पंडित मुरलीधर की जो पुत्र की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। पढ़ाई के मामले में जरा भी लापरवाही करने पर बालक रामप्रसाद को पिताजी की मार भी पड़ती थी। हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराते समय एक बार उन्हें बंदूक के लोहे के गज से इतनी मार पड़ी कि गज टेढ़ा हो गया। अपनी इसी मार का वर्णन करते हुए उन्होंने एक जगह लिखा है कि बाल्यकाल से पिताजी मेरी शिक्षा का अधिक ध्यान रखते थे और जरा सी भूल करने पर बहुत पीटते थे। मुझे अब भी भली भांति स्मरण है कि मैं जब नागरी के अक्षर लिखना सीख रहा था तो मुझे ऊ लिखना न आया। मैंने बहुत प्रयत्न किया पर जब पिताजी कचहरी चले गए तो मैं भी खेलने चला गया। पिताजी ने कचहरी से आकर मुझे ऊ लिखवाया, मैं ना लिख सका। उन्हें मालूम हो गया कि मैं खेलने चला गया था, इस पर उन्होंने मुझे बंदूक के लोहे की गज से इतना पीटा कि गज टेढ़ा पड़ गया। मैं भागकर दादाजी के पास चला गया, तब बचा। श्रोताओं, इसके बाद बालक रामप्रसाद ने पढ़ाई में कभी असावधानी नहीं की, वे परिश्रम से पढ़ने लगे। वे 8वीं कक्षा तक सदा अपनी कक्षा में प्रथम आते थे, किंतु कुसंगति में पढ़ जाने के कारण उर्दू मिडिल परीक्षा में वे लगातार 2 वर्ष अनुत्तीर्ण हो गए। बालक की इस अवनति से घर में सभी को बहुत दुख हुआ। 2 बार एक ही परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर बालक रामप्रसाद जी का मन उर्दू की पढ़ाई से उठ गया। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, किंतु पिता पंडित मुरलीधर अंग्रेजी पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। वे रामप्रसाद को किसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे। अंततः माँ के कहने पर उन्हें अंग्रेजी पढ़ने भेजा गया। अंग्रेजी में 8वीं पास करने के बाद 9वीं में ही वे
आर्य समाज के संपर्क में आए, जिससे उनके जीवन की दशा ही बदल गई। बच्चों के घर में अपने माता पिता से भी अधिक स्नेह अपने दादा दादी से होता है। बालक राम प्रसाद भी इसके अपवाद नहीं थे। पिताजी अत्यंत सख्त अनुशासन वाले व्यक्ति थे, अतः पिताजी के गुस्से से बचने का उपाय राम प्रसाद के लिए अपने दादा श्री नारायण लाल ही थे। दादा सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। मुख्य रूप से सिक्के विक्रय करना ही उनका व्यवसाय था। उन्हें अच्छी नस्ल की दुधारू गायें पालने का बड़ा शौक था। दूर दूर से दुधारू गायें खरीद कर लाते और पोते को खूब दूध पिलाते थे। गायें इतनी सीधी थी कि बालक राम प्रसाद जब तब उनका थन मुँह में लेकर दूध पिया करते थे। दादाजी राम प्रसाद के स्वास्थ्य पर सदा ध्यान देते थे। इसके साथ ही दादाजी धार्मिक स्वभाव के पुरुष थे। वे सदा सायंकाल शिव मंदिर में जाकर लगभग 2 घंटे तक पूजा भजन इत्यादि करते थे, जिसका बालक राम प्रसाद पर गहरा प्रभाव पड़ा। दादाजी का देहावसान लगभग 55 वर्ष की उम्र में हुआ। पंडित राम प्रसाद के जन्म से पूर्व ही उनके एक भाई की जन्म के कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई थी। राम प्रसाद के बाद उनके घर में 5 बहनों तथा 3 भाइयों का जन्म हुआ। इनमें से 2 भाई तथा 2 बहनें कुछ ही समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद परिवार में 2 भाई तथा 3 बहनें रहीं। उनके परिवार में कन्याओं श्रोताओं उसके बाद उन जो है पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की माँ पूर्णतया एक अशिक्षित ग्रामीण महिला थी। विवाह के समय उनकी अवस्था केवल 11 वर्ष की थी। 11 वर्ष की नववधु को घरेलू कामों में जो है कामों की शिक्षा देने के लिए दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया था। बताया जाता है कि दादी जी उनकी जो अभी तक कुटाई पिसाई का काम करती रहती थी, जिससे बहू को काम सिखाने का समय नहीं मिल पाता था। कुछ ही दिनों में उन्होंने घर का सारा काम और भोजन बनाना इत्यादि अच्छी तरह से सीख लिया। राम प्रसाद जब 6-7 वर्ष के हो गए तो माताजी ने भी हिंदी सीखना शुरू किया। उनके मन में पढ़ने की तीव्र इच्छा थी। घर के कामों को निपटाने के बाद वे अपनी किसी शिक्षित पड़ोसिन से लिखना पढ़ना सीखने लगी। अपनी तीव्र लगन से कुछ ही दिनों में हिंदी की पुस्तकें पढ़ना सीख गई। अपनी सभी पुत्रियों को भी स्वयं उन्होंने ही हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराया था। श्रोताओं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के व्यक्तित्व पर उनकी माँ का गहरा प्रभाव पड़ा था। अपने जीवन की सभी सफलताओं का श्रेय उन्होंने अपनी माँ को ही दिया। माँ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेजिनी की उनकी माता ने की थी। माताजी का मेरे लिए सबसे बड़ा उपदेश यही था कि किसी की प्राण न लो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। श्रोताओं, लाहौर षड्यंत्र के मामले में सन 1915 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी भाई परमानंद को फांसी की सजा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल भाई परमानंद के विचारों से प्रभावित थे और उनके हृदय में इस महान देशभक्त के लिए अपार श्रद्धा थी। इस फैसले का समाचार पढ़कर बिस्मिल जी का देशानुराग जाग पड़ा। उन्होंने उसी समय अंग्रेजों के अत्याचारों को मिटाने तथा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सतत प्रयत्न करने की प्रतिज्ञा ली। यद्यपि भाई परमानंद की फांसी की सजा को बाद में महामना मदन मोहन मालवीय तथा देशबंधु एंड्रयूज के प्रयत्नों से आजन्म
कारावास में बदल दिया गया, किंतु राम प्रसाद बिस्मिल जीवन पर्यंत

0: अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। इस प्रतिज्ञा के बाद उनका एक नया जीवन प्रारंभ हुआ। पहले वे एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के पुत्र थे, इसके बाद वे आर्य समाज से प्रभावित हुए और एक सच्चे सात्विक आर्य समाजी बने तथा इस प्रतिज्ञा के बाद उनका जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित हो गया। ये उनके हृदय में देश प्रेम के बीज का प्रथम अंकुरण था। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाने पर रामप्रसाद बिस्मिल कुछ क्रांतिकारी विचारों वाले युवकों के संपर्क में आए। इन युवकों का मत था कि देश की तत्कालीन दुर्दशा के एकमात्र कारण अंग्रेज ही थे। रामप्रसाद भी इन विचारों से प्रभावित हुए, अतः देश की स्वतंत्रता के लिए उनके मन में कुछ विशेष काम करने के विचार आए। यहीं उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि क्रांतिकारियों की एक गुप्त समिति भी है। इस समिति के मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी मार्ग से देश को स्वतंत्रता दिलाना है। वे सब ज्ञात होने पर बिस्मिल के मन में भी इस समिति का सदस्य बनने की तीव्र इच्छा हुई। वे समिति के कार्यों में सहयोग देने लगे। अपने एक मित्र के माध्यम से इसके सदस्य बन गए और थोड़ी ही समय में वे समिति के कार्यकारिणी के सदस्य बना लिए गए। इस समिति के सदस्य बनने के बाद बिस्मिल फिर घर शाहजहांपुर आ गए। समिति के पास आय का कोई स्रोत न होने से धन की बहुत कमी थी, अतः इसके लिए कुछ धन संग्रह करने के लिए उनके मन में एक पुस्तक प्रकाशित करने का विचार आया। पुस्तक प्रकाशित करने के लिए भी रुपयों की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने एक योजना बनाई। अपनी माँ से कहा कि वे कुछ काम करना चाहते हैं, इससे अवश्य लाभ होगा, अतः इसके लिए पहले कुछ रुपयों की आवश्यकता होगी। माँ ने उन्हें 200 रुपये दिए। उन्होंने अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली नाम की एक पुस्तक पहले ही लिख ली थी। पुस्तक को प्रकाशित करने का प्रबंध किया गया। इसके लिए फिर से 200 रुपये की आवश्यकता पड़ी। इस बार भी माँ से जो है 200 रुपये और लिए। पुस्तक प्रकाशित हुई, इसकी कुछ प्रतियां बिक गई, जिनसे लगभग 600 रुपयों की आमदनी हुई। पहले माह से लिए हुए 400 रुपये उन्होंने लौटा दिए। फिर मातृदेवी समिति की ओर से एक पर्चा प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था देशवासियों के नाम संदेश। समिति के सभी सदस्य और भी अधिक उत्साह के साथ काम करने लगे। ये पर्चा संयुक्त प्रांत के अनेक जिलों में चिपकाया गया और वितरित किया गया। शीघ्र ही सरकार चौकन्नी हो गई, अतः संयुक्त प्रांत की सरकार ने इस पर्चे तथा पूर्व लिखित पुस्तक दोनों को जब्त कर लिया। श्रोताओं, रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोगों ने सुनियोजित कार्रवाई के तहत ये कार्य करने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देशभक्तों ने रेल विभाग की ले जाई जा रही संग्रहित धनराशि को लूटा। उन्होंने ट्रेन के गार्ड को बंदूक की नोक पर काबू कर लिया। गार्ड के डिब्बे में लोहे की तिजोरी को तोड़कर आक्रमणकारी दल 4000 रुपये लेकर फरार हो गए। इस डकैती में अशफाकुल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल, मनमथनाथ गुप्त, राम प्रसाद बिस्मिल आदि शामिल थे। काकोरी षडयंत्र मुकदमे ने काफ़ी लोगों का ध्यान खींचा। इसके कारण देश का राजनीतिक वातावरण आवेशित हो गया। श्रोताओं, सभी प्रकार के मृत्युदंड को बदलने के लिए की गई दया प्रार्थनाओं के अस्वीकृत हो जाने के बाद बिस्मिल जी अपने महाप्रयाण की तैयारी करने लगे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में गोरखपुर जेल में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। फांसी के तख्त पर झूलने के 3 दिन पहले तक वे इसे लिखते रहे। इस विषय में उन्होंने स्वयं लिखा है कि आज 16 दिसंबर 1927 ईस्वी को निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हूं, जबकि 19 दिसंबर 1927 ईस्वी सोमवार को 6:30 बजे प्रातः काल इस शरीर को फांसी पर लटका देने की तिथि निश्चित हो चुकी है। अतएव नियत सीमा पर यह लीला संवरण करनी होगी। उन्हें इन दिनों गोरखपुर जेल की 9 फीट लंबी तथा इतनी ही चौड़ी एक कोठरी में रखा गया था। श्रोताओं, 19 दिसंबर 1927 की प्रातः जो है इस दिन उन्हें फांसी की सजा दी गई। श्रोताओं, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी को देश उनके बलिदान के लिए हमेशा याद रखे। और अब श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेंगे आम बले रुड़ तबल में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोर आए को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मैंने आए वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्तो तो कहाँ तो घर आए में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है
6: उत्तम बुरम सिंह तमसोय अनिता तमसोय भूरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया या पाम ना रियल तपाम ना रियल वाह बेटा मिका
7: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने मैं पुरी उड़ी ने बागिया तो कि मैं दोनों से यार सी कोलो पुलिस कोलो मैं लड़ाई चलाओ तो मैं दूर रहने को यहाँ तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काका मेरे मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन तो ऐसे आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम तेरी ना मिला आप ही लेते ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं प्रसिद्ध भारतीय तैराक मिहिर सेन जी के बारे में, जिनकी आज पुण्यतिथि है। श्रोताओं, मिहिर सेन जी का जन्म 16 नवंबर 1930 को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुआ था। उनके पिताजी का नाम डॉक्टर रमेश सेन गुप्ता था और उनकी माताजी का नाम लीलावती था। उनके पिता एक फिजिशियन थे। मिहिर सेन कलकत्ता हाई कोर्ट में बैरिस्टर थे, लेकिन उन्हें रिकॉर्ड बनाने वाले तैराक के रूप में जाना जाता है। मिहिर सेन अपनी वकालत की तैयारी के लिए इंग्लैंड गए थे, परंतु वहां वे इंग्लिश चैनल की तैराकी के प्रति आकृष्ट हो गए। शुरू में उन्होंने चैनल तैरकर पार करने के कुछ असफल प्रयास भी किए, लेकिन 27 सितंबर 1958 को वो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने में सफल रहे। इस प्रकार वे इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं, प्रथम एशियाई भी थे। उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करने में 14 घंटे 45 मिनट का समय लिया। उन्होंने ये तैराकी डोवर से कैलाइस तक की। इस प्रकार उन्होंने अपनी हिम्मत व तैराकी के द्वारा अन्य भारतीय तैराकों के लिए लंबी दूरी की तैराकी में अधिक निपुणता प्राप्त करने के नए रास्ते खोल दिए। श्रोता, मिहिर सेन का अगला साहसिक कारनामा श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोटी तक तैराकी का था, जो उन्होंने 6 अप्रैल 1966 को आरंभ कर 25 घंटे 44 मिनट में पूरा किया। ये पाक स्ट्रेट अनेक जहरीले सांपों और शार्क से भरपूर थी। उनके साहसिक कार्य को भारतीय नौसेना द्वारा सहायता प्रदान की गई। इसके पश्चात मिहिर सेन ने 24 अगस्त 1966 को 8 घंटे 1 मिनट में जिब्राल्टर डार ई डेनियल को पार किया, जो स्पेन और मोरक्को के बीच है। जिब्राल्टर को तैरकर पार करने वाले मिहिर सेन प्रथम एशियाई थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने सभी 7 समुद्रों को तैरकर पार करने की जिद ठान ली हो, और वास्तव में उन्होंने अनेक समुद्र पार करके 1966 में 5 नए कीर्तिमान स्थापित किए। 12 सितंबर 1966 को उन्होंने डार्डेनल्स को तैरकर पार किया। डार्डेनल्स को पार करने वाले वे विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। उनके केवल 9 दिन पश्चात यानी 21 सितंबर को वास्फोरस को तैरकर पार किया। 29 अक्टूबर 1966 को उन्होंने पनामा कैनाल को लंबाई में तैरकर पार करना शुरू किया। लंबाई में पार करने के कारण ये दूरी उन्होंने 2 स्टेज में पार की। 29 अक्टूबर को शुरू करके पनामा की तैराकी उन्होंने 31 अक्टूबर 1966 को समाप्त की। इस पनामा कैनाल को पार करने के लिए उन्होंने 34 घंटे 15 मिनट की तैराकी की। मिहिर सेन ने कुल मिलाकर 600 किलोमीटर की समुद्री तैराकी की। उन्होंने एक ही कैलेंडर वर्ष में 6 मील लंबी दूरी की तैराकी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। 5 महाद्वीपों के 7 समुद्रों को तैरकर पार करने वाले मिहिर सेन विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। श्रोता, मिहिर सेन एक अतुलनीय तैराक थे। उन्होंने अपनी हिम्मत और मेहनत के दम पर इतनी बड़ी तैराकी का जोखिम उठाया। 11 जून 1997 को मिहिर सेन का कोलकाता में 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक और जरूरी संदेश।
9: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है, तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम रस रंजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में फिल्म मुद्दत के इस गीत से।

0: श्रोताओं, ये था फिल्म मुद्दत का गीत आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: और अब श्रोताओं, ये सुनते हैं अगला गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आशिकी।

निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म पापा कहते हैं का ये गीत।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत, सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है वास्तव।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म कीमत का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
1: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओ, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
1: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भून कर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
2: जी
1: तो श्रोताओ, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
2: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमृषि, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
2: जी
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
2: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में

0: आया जाता है।
1: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारी ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियां उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन

0: इन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: राम कृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो यह है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: माता जी ने पांडिचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला,
4: घर के पास लगा था मेला,
3: उसमें आया चाट

मेले की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहाँ।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 10:29 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण है।

आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह के 10:30 हो चुके हैं और अब समय है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची का। मैं हूं विश्वजीत और कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और जोहार करता हूं। अगले एक घंटे तक हम करेंगे ढेर सारी बातें, साझा करेंगे रोचक जानकारियां, सुनेंगे आज के दिन से जुड़ी

खास बातें और साथ ही आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत होंगे एक से बढ़कर एक मधुर और शानदार गीत। तो आइए इस सुहानी सुबह की खूबसूरत शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन एक प्रेरणादायक सुविचार आपके साथ साझा करते हैं। आज का सुविचार है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो लोग निरंतर मेहनत, धैर्य और संघर्ष करते हैं, सफलता एक दिन जरूर उनके कदम चूमती है। याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से घबराते नहीं, बल्कि हर चुनौती का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। मेहनत आपका कर्म है, संघर्ष आपकी पहचान है और सफलता उसका सबसे सुंदर परिणाम है।

श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के मौसम की। कल हुई बारिश के बाद रांची का मौसम काफी सुहावना और खुशनुमा हो गया है। सुबह और शाम की हवाओं में ठंडक का एहसास है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप कभी भी अपनी तेवर दिखा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि दोपहर के समय अनावश्यक रूप से तेज धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मौसम का आनंद जरूर लें, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। अब जब बात सूरज और उसकी रोशनी की हो ही रही है, तो क्यों ना सुन लिया जाए एक ऐसा गीत जो सूरज की गर्माहट और जीवन की खूबसूरती को बयां करता है। प्रस्तुत है फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से ये खूबसूरत गीत। सूरज

जोहर रांची कार्यक्रम में अब वक्त है इतिहास के पन्नों को पलटने का। आइए जानते हैं 11 जून के दिन इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 11 जून सन 1509 को इंग्लैंड के राजा हेनरी एस्टम का राज्याभिषेक हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1866 में इलाहाबाद राज्य उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। वहीं आज के दिन वर्ष 1970 को महान समुद्री खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक का जहाज ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ में टकरा गया था। लौह महिला के नाम से मशहूर मार्गरेट थैचर ने लगातार तीसरी बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। आज के दिन वर्ष 1987 को 11 जून 1897 को भारत के इतिहास में सबसे भीषण भूकंप में से एक असम भूकंप आया था, जिसमें पूर्वोत्तर भारत में भारी तबाही मचाई गई थी। वर्ष 2009 में आज के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वाइन फ्लू H1N1 को एक वैश्विक महामारी घोषित किया था। वहीं आज के दिन वर्ष 1964 को विश्व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आज के दिन खेल जगत की बात करें, वर्ष 1975 को इंग्लैंड में पहले पुरुष क्रिकेट विश्व कप का शुभारंभ हुआ था, जिसने क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया। सचमुच इतिहास हमें अतीत से सीखने और भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।

अग्रणी उद्योगपति, स्वतंत्रता सेनानी और बिरला साम्राज्य के संस्थापक वे महान महात्मा गांधी के बेहद करीबी सहयोगी और मित्र थे। उन्होंने देश में शिक्षा और उद्योग के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया था, जिनका निधन आज ही के दिन वर्ष 1983 को हुआ। वासुदेव बामन शास्त्री खरे मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध इतिहासकार, नाटककार, कवि और जीवनी लेखक। उन्होंने महाराष्ट्र और मराठा साम्राज्य के इतिहास को सहेजने में अहम भूमिका निभाई थी, जिनका निधन आज ही के दिन वर्ष 1924 को हुआ था। लेव बाइगोत्स्की रूस के महान मनोवैज्ञानिक, बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास पर दिए गए उनके सिद्धांत आज भी पूरे दुनिया के शिक्षा जगत में पढ़ाए जाते हैं, जिनका निधन आज ही के दिन वर्ष 1934 को हुआ। रॉबर्ट ई हार्वर्ड अमेरिका लेखक और पल्स फिक्शन के जन्मदाता। वे दुनिया के बेहद लोकप्रिय काल्पनिक किरदार कोनन द बारबेरियन के रचयिता थे, जिनका निधन आज ही के दिन वर्ष 1936 को हुआ। नमन उन महान आत्माओं को जिन्होंने आज ही के दिन इस संसार से विदा ली, लेकिन अपने कार्यों और योगदान से इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आइए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अब बात उन्हें जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ, उन्हें नमन करते हैं जिनका आज ही के दिन इस धरती में जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आइए जानते हैं कि 11 जून को जन्म में कुछ महान और प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। लालू प्रसाद यादव वर्ष 1948 को आज ही के दिन जन्मे,

जिनका जन्म आज ही के दिन 1910 को हुआ। फ्रांस के प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी, पर्यावरणविद और अन्वेषक, उन्होंने समुद्र के नीचे सांस लेने वाले आधुनिक उपकरण स्कूबा डाइविंग गियर का सह आविष्कार किया था, जिसने इंसानों के लिए समुद्र दुनिया के रहस्य खोल दिए। एस वाई कुरैशी वर्ष 1947 के और आज के दिन जन्मे। भारत के पूर्व 17वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन। इन्होंने भारत की चुनावी प्रक्रियाओं में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। चार्ल्स फ्रैबी फ्रांस के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, जिन्होंने अपने साथी हेनरी बुडसन के साथ मिलकर वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन परत की खोज की थी, जिनका जन्म भी आज के दिन 1867 में हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और कवि। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने ऐतिहासिक काकोरी कांड की मुख्य योजना बनाई थी। युवाओं में देशभक्ति की अलग जगाने वाले गीत सरफरोशी की तवन्ना अब हमारे दिल में है, इन्हीं की पहचान से जुड़ा है।

जोहार रांची कार्यक्रम में श्रोताओं, अब एक ऐसी खबर जो पूरे झारखंड के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। हमारी समृद्ध कला संस्कृति और लोक परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से पहचान मिली है। झारखंड के 3 प्रतिष्ठित लोक कलाकार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से संयुक्त रूप से सम्मानित किए जाएंगे। ये देश का सर्वोच्च प्रदर्शन कला सम्मान है जिसे राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। तीनों कलाकारों में बुटन देवी, सोमवारी देवी और सरायकेला के 6 मुकोटा शिल्पकार सुशांत कुमार महापात्र शामिल हैं। बुटन देवी और सोमवारी देवी ने अपना पूरा जीवन झारखंड की पारंपरिक नचनी नृत्य परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित कर दिया। सरायकेला के प्रख्यात 6 मुखौटा शिल्पकार सुशांत कुमार महापात्रा ने सरायकेला 6 की पारंपरिक मुखौटा कला के संरक्षण के अहम योगदान दिया। यह 6 दशक से अधिक समय तक कला की सेवा कर रहे हैं। उनकी शिल्प साधना ने सरायकेला 6 को एक नई पहचान दिलाई।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जोहार रांची कार्यक्रम में अब समय है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का। आज हम बात करेंगे सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या के बारे में। सिरदर्द एक आम समस्या है।

लेकिन यदि इस दर्द बार बार हो, सिर के एक हिस्से में तेज दर्द महसूस हो, तेज रोशनी या शोर से परेशानी हो, तो ये माइग्रेन का संकेत हो सकता है। माइग्रेन की समस्या तनाव, अनियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद ना लेने, लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करने तथा शरीर में पानी की कमी के कारण बढ़ सकती है। इससे बचाव के लिए संतुलित आहार लें, भरपूर पानी पिएं, पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। तेज धूप में बाहर निकलते समय सावधानी बरतें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि सिर दर्द लगातार बनी रहे या अधिक परेशानी हो तो चिकित्सा की सलाह अवश्य लें। स्वस्थ शरीर में ही जीवन का वास होता है और ये सबसे बड़ी पूंजी है।

श्रोताओं, अगर आपको घूमने फिरने के साथ साथ धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को देखने का शौक है तो रांची के दुर्गा क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ टेम्पल रांची आपके लिए एक बेहतरीन स्थल है। लगभग 17वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। इसकी वास्तुकला जगन्नाथ टेम्पल पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से प्रेरित मानी जाती है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि यहाँ से रांची शहर का सुंदर दृश्य भी देखने को मिलता है। हर वर्ष आषाढ़ के माह में यहाँ भव्य जगन्नाथ रथ मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मेले में झूले, स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होता है। यह मेला झारखंड की संस्कृति, आस्था और लोक जीवन की खूबसूरत झलक प्रस्तुत करता है। तो अगर आप आने वाले दिनों में परिवार या मित्रों के साथ कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो धुर्वा का जगन्नाथ मंदिर और वहां लगने वाला रथ मेला आपकी सूची में जरूर होना चाहिए।

श्रोताओं, अब जोहार रांची कार्यक्रम में बात कर लेते हैं खेल की। झारखंड क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। झारखंड के रांची के जेएससी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में झारखंड टी20 लीग का शानदार आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह की सबसे खास बात रही झारखंड के गौरव और भारतीय क्रिकेट के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया। इस लीग में 6 फ्रेंचाइजी टीम हिस्सा ले रही है और टूर्नामेंट का उद्देश्य झारखंड की युवा क्रिकेटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच प्रदान करना। आने वाले दिनों में यही खिलाड़ी राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना साकार लेकर मैदान पर उतरने वाले हैं। इसके अलावा आज से फुटबॉल का महाकुंभ, यानी कि फुटबॉल का सबसे बड़ा महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 का आगाज गुरुवार से हो रहा है। अगले 39 दिनों तक दुनिया की नजरें अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के 16 स्टेडियम में टिकी रहेगी। 48 टीमों की भागीदारी के साथ यह विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण होगा। करोड़ों प्रशंसकों के लिए यह सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून, जज्बा और राष्ट्रीय गौरव की लड़ाई है। इन दिग्गजों की जो अंतिम टूर्नामेंट भी होगी, क्योंकि अर्जेंटीना के मेसी जो कि 48 वर्षीय हैं और पुर्तगाल के रोनाल्डो जो कि 41 वर्ष के हैं, जिनके लिए ये आखिरी विश्व कप होगा, तो इन पे निगाहें होंगी और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आयोजन है फुटबॉल के लिए।

श्रोताओं, इसी प्यारे गीत के साथ जोहार रांची कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज हमने ढेर सारी बातें की, कई जानकारियां साझा की और आपके लिए पसंदीदा गीत भी सुनाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के हर पल का आनंद लेते रहिए। इसी के साथ जोहार रांची कार्यक्रम से दीजिए मुझे विश्वजीत को इजाजत। नमस्कार, जोहार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 11:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है आपका प्रिय कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश हमें रांची के हेनू से ममता पासवान, जूही पासवान, राजू पासवान, अमर पासवान, शेखर पासवान तथा उनके साथियों ने भेजी है। इसी गीत को रांची के बरियातू से पूनम कुमारी, कविता कुमारी, मोहित कुमार, अमर कुमार और उनके मित्र ने भी सुनना चाहा है। तो आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद को करते हैं शामिल और सुनते हैं फिल्म सड़क का ये गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। इस गाने को लिखा है समीर सुरेंद्र साथी और रानी मलिक ने।

श्रोताओं, अब पेश है आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत गीत। यह फरमाइश हमें जमशेदपुर से राहुल, पूजा, नेहा, अमित और उनके सभी दोस्तों ने भेजी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए फिल्म भूल भुलैया का ये मधुर गीत लबों को। इस गीत को अपनी सुरीली आवाज से सजाया है केके ने, जबकि इसके बोल लिखे हैं सईद खादरी ने और संगीत दिया है प्रीतम ने। तो आइए प्यार और एहसास से भरे इस खूबसूरत नगमे का आनंद लेते हैं।

भी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक आपकी पसंद। और अब वक्त है आपकी पसंद के एक और शानदार गीत का, फेश है फिल्म चलते चलते से ये लोकप्रिय गीत। इस खूबसूरत गीत को अपनी मधुर आवाज दी है अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने। इस गीत को सुनना चाहा है रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लच्छनपुर से, विश्वनाथ साहू लिवे से, गुलाब दास मणिकपुरी और दतरंगी से भागवत वर्मा। सुनिए फिल्म चलते चलते से ये गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: आपकी पसंद कार्यक्रम के समापन से पेश सिटी पहले पेश है ये जिस्म फिल्म का ये जादू है नशा.

अपनी मधुर आवाज दी है श्रेया घोषाल ने, गीत के बोल लिखे हैं निलेश मिश्रा ने और संगीत दिया है MM किरण वानी ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोमिका नेताम और उत्कर्ष। सुनिए ये खूबसूरत गीत।

0: पंखों की जरूरत कहाँ, हौसलों से उड़ान होती है, मेहनत लगन और आत्मविश्वास से ही नई पहचान होती है।
1: और जब नारी ठान ले कुछ कर दिखाने की तो हर जीत फिर उसी के नाम होती है।
0: बहनों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी श्रोता बहनों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में, जहां बातें होती हैं ढेर सारी और वो भी आपसे जुड़ी हुई। कार्यक्रम की आज के इस खूबसूरत सफर में आपके साथ हैं हम दो सखियां, मैं मधु
1: और मैं हूं आपकी रेडियो सखी रानी। स्वीकार कीजिए बहनों मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मंगल कामना आप सभी के लिए। बहनों दोपहर 12 बजे का ये समय बहुत खास है क्योंकि यही वो अपना समय होता है जब हम मिलते हैं, बातें करते हैं, कुछ मन की तो कुछ जीवन की, और कुछ बातें तो ऐसी जो मन में उत्साह और एक नई उमंग जगा जाए।
0: और आज भी कुछ ऐसी ही बातें होंगी रानी, उन बेटियों और उन महिलाओं की जिन्होंने अपने हौसले, मेहनत और आत्मविश्वास से खेल के मैदान में ऐसी पहचान

0: बनाई कि पूरा देश उन पर गर्व करता है, क्योंकि बहनों आज यानी 11 जून को है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
1: हाँ बहनों, कहते हैं सपनों की कोई सीमा नहीं होती, और जब इरादे मजबूत हों तो हर बाधा छोटी पड़ जाती है। एक समय था जब खेलों की दुनिया को केवल पुरुषों तक सीमित समझा जाता था, लेकिन आज की नारी घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही है, और खेल का मैदान भी इससे अछूता नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा रानी तुमने, जहाँ सभी सीमाएं थी आज वहीं महिलाएं अपने आत्मविश्वास, मेहनत और जुनून से नए कीर्तिमान रच रही हैं। वो लड़कियां जो कभी मैदान तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती थी, आज उसी मैदान में जीतकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। बहनों
1: बिल्कुल, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फुटबॉल का, मुक्केबाजी का रिंग हो या बैडमिंटन कोर्ट हो या ओलंपिक का मंच, भारतीय महिलाओं ने हर जगह अपने हुनर का परचम लहराया है।
0: बिल्कुल, चाहे खेल हॉकी हो, एथलेटिक्स हो या तीरंदाजी, हर खेल में महिलाएं अपनी मेहनत और प्रतिभा से नई मिसाल कायम कर रही हैं।
1: हाँ बहनों, खेल सिर्फ ताकत या गति का नाम नहीं है, ये है जुनून, अनुशासन और आत्मविश्वास का संगम, और आज भारत की महिलाएं इस संगम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही हैं।
0: बिल्कुल, बात चाहे पीवी सिंधु की हो, जिन्होंने बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतकर इतिहास रचा, या फिर मीराबाई चानू की, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में दुनिया को दिखा दिया कि हिम्मत हो तो वजन भी हल्के लगने लगते हैं। उन्होंने भारत को ओलंपिक और विश्व मंच पर गौरवान्वित किया है।
1: बिल्कुल, क्रिकेट की दुनिया में भी अब महिलाएं पीछे नहीं है बहनों। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। इन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता।
0: खेलों की दुनिया में जब भी महिलाओं की ताकत की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, जो सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि संघर्ष और हिम्मत की मिसाल भी है। हम बात कर रहे हैं भारत की लेडी ऑफ द रिंग मैरी कॉम की, जिन्होंने क्वीन ऑफ बॉक्सिंग भी कहा जाता है।
1: हाँ, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर उन्होंने साबित कर दिया बहनों कि अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किलें भी रास्ता नहीं रोक सकती। एक माँ, एक खिलाड़ी और एक चैंपियन, तीनों भूमिकाओं को उन्होंने बखूबी निभाया, और वर्तमान में तेलंगाना के निखत जरीन भारत की सबसे प्रसिद्ध मुक्केबाजों में से एक हैं।
0: और जब बात होती है रफ्तार की तो हम भारत की ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया और अपनी तेज दौड़ से सबको चौंका दिया।
1: वहीं साक्षी मलिक ने कुश्ती में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर यह सिद्ध किया कि संकल्प और परिश्रम से कोई भी लक्ष्य संभव नहीं होता।
0: और अगर हम अपने झारखंड की बात करें रानी, तो ये धरती भी खेल प्रतिभाओं से भरी हुई है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी की दुनिया का एक ऐसा नाम जिन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया है।
1: बिल्कुल, हॉकी के मैदान में भी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे जैसी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। यही नहीं बहनों, जमशेदपुर की अरुणा मिश्रा ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीते हैं।
0: और बहनों, सच कहें तो ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये उस लंबी कतार की झलक है जिसमें अनगिनत बेटियां शामिल हैं जो हर दिन मेहनत कर रही हैं और आने वाले समय में देश का नाम और ऊंचा करने के लिए तैयार हैं।
1: हालांकि ये सफर आसान नहीं था बहनों। कई बार संसाधनों की कमी, कभी समाज की सोच तो कभी अवसरों की कमी, लेकिन इन सबके बीच इन महिलाओं ने हार नहीं मानी,
0: और यही असली जीत है, मेडल के साथ साथ सोच की बदल देना। कभी जो कहा जाता था कि लड़कियों का काम नहीं, आज वही लड़कियां उसी मैदान में इतिहास रच रही हैं। बहनों
1: बिल्कुल, बहनों हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं, हार तो तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, और हर लड़की में एक खिलाड़ी छिपी होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की और आगे बढ़ाने की।
0: हाँ बहनों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने घरों में बेटियों को समान अवसर दें और उनकी सपनों को उड़ान भरने दें, उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें,
1: क्योंकि खेल केवल शारीरिक क्षमता का नहीं बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करते हैं बहनों।
0: और जब यही खेल हमारी बेटियां अपने जुनून, मेहनत और समर्पण से खेलती हैं तो वे सिर्फ पदक ही नहीं जीतती बल्कि एक नया

0: इतिहास भी रचती हैं।
1: हाँ बहनों, याद रखें कि सपने बड़े हों या छोटे, अगर हिम्मत और लगन साथ हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय

0: मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है सखियों आप सभी का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आज आपके साथ है आपकी दो सखियां मधु और रानी। तो रानी, अब कार्यक्रम में आगे कौन सा कलेवर लेकर आई हो सखियों के लिए?
3: हाँ बहनों, अब आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता, खेल के क्षेत्र में उभरते खिलाड़ी। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं पूर्व भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी और कप्तान सुमराई टेटे, और इनसे बात कर रही हैं मधु चौबे।
2: सखियों, आज खेल की दुनिया में सिर्फ पुरुषों का ही वर्चस्व नहीं है, बल्कि हमारी बेटियां भी बड़े ही दमखम के साथ अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में खेल की दुनिया में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। गांव की पगडंडियों से लेकर ओलंपिक के पोडियम तक हमारे देश की महिला खिलाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बात करें अपने राज्य झारखंड की, तो हमारा राज्य तो खिलाड़ियों की नर्सरी ही रहा है। विपरीत परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद हमारी बेटियां खेल के क्षेत्र में जय जोहार का नारा बुलंद करती आ रही हैं और कर भी रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के विशेष अवसर पर आपको मिलवाने जा रहे हैं आज की खास मेहमान सुमराई टेटे जी से। सखियों, भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुमराई टेटे जी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। आपको लाइफटाइम ध्यानचंद पुरस्कार 2017, झारखंड रत्न 2007 से सम्मानित किया जा चुका है, और वर्तमान में आप दक्षिण पूर्व रेलवे महिला हॉकी टीम की कोच भी हैं। अब आज का विषय भी आपको बता दें, आज का विषय है खेल के क्षेत्र में उभरते खिलाड़ी। नमस्कार सुमराय जी।
4: नमस्ते मैम,
2: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में। सुमराय जी, हर महिला का सपना होता है देश के लिए खेलना। 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में जब आपने स्वर्ण पदक जीता, तिरंगा ऊपर गया और राष्ट्रगान गूंजा, तो वो एहसास कैसा था आपका?
4: ये तो बिल्कुल आप उस पल में ले गई मुझे, क्योंकि हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो अपने देश के लिए खेले सबसे पहले तो, और देश के लिए खेलना गर्व की बात होती है। तो हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करे। जब भी कोई स्पोर्ट्स में आता है, कोई सेंटर्स में आते हैं, उनका लक्ष्य वहाँ से तय होता है कि हमको एक दिन देश के लिए खेलना है। और जब देश को खेलते हुए हम अचीव करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और जब विजयी होते हैं और देश का राष्ट्रीय ध्वज जो सबसे ऊपर चढ़ाया जाता है, तो यह क्षण और पल वो कभी ना जाने वाला होता है ना वह जाएगा। जिस तरह से हम लोगों ने 2002 में वह पहला अनुभव प्राप्त किया, जिसमें कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था सभी कंट्रीज के ऊपर में था, और उस वक्त जब राष्ट्रगान हुआ तो हम सबों के आंखों में आंसू आ गए, पूरी टीम के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हम उसका इंतजार कई सालों से कर रहे थे कि हम एक दिन देश के लिए मेडल जीतेंगे, और वह पल आया था। और विशेषकर यह भी था कि हमने इंग्लैंड को उनके ही धरती पर हराया था और यह मेडल प्राप्त किया था। जब राष्ट्रध्वज ऊपर जा रहा था तो यह मतलब हम सबों के शरीर में रोंगटे खड़े कर दिए थे। अभी भी जब बात करते वक्त मुझे ऐसा फील होता है कि सचमुच राष्ट्रीय ध्वज का मतलब जब किसी को समझ में आता है तो वह किसी से कम नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है, हर एक भारतीय का एक सपना होता होगा, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, कि अपना राष्ट्रीय ध्वज ऊपर कराए, इसमें अपने आप को गर्व महसूस कराए, तो ये देश के प्रति अपनी सेवा को समर्पित करने का एक तरीका होता है।
2: बिल्कुल, झारखंड को हॉकी और तीरंदाजी की नर्सरी कहा जाता है। आपके समय से लेकर आज तक आप झारखंड की उभरती महिला खिलाड़ियों की सबसे बड़ी ताकत किसे मानती हैं?
4: जितने भी खिलाड़ी आते हैं, मैं उनकी

0: बात करूं तो डेफिनेटली किसी ना किसी को मतलब अपना आइडियल्स मानती हैं,
1: जी
0: कोई भी खिलाड़ी को, जिससे कि उसको देखकर सीखते हैं। मैं ये कभी सोची नहीं थी कि मैं यहाँ पहुंचूंगी, लेकिन जब मैं झारखंड का, तब तो बिहार था, झारखंड सरकार के आवासीय सेंटर में आई, तब कई खिलाड़ी हमारे सीनियर्स थे, वो भारतीय टीम के कैंप में जाते थे, तो एक लक्ष्य होता था कि हम भी एक दिन मतलब भारत के लिए खेलना चाहेंगे, खेलेंगे, और विश्वास के साथ ट्रेनिंग करते रहे। लेकिन ऐसा मैंने कभी देखने का, उस वक्त टीवी का भी थोड़ा सा ये समस्या था, इतना ये जैसे कि अभी लाइव दिखाए जाते हैं, कुछ ये किया जाता है, तो
1: जी
0: हम लोगों को देखने का मौका कम मिला कि हम किसी का ऐसा गेम देख करके उनकी ओर आकर्षित हों। लेकिन
1: जी
0: हाँ, इतना मैं कहना चाहूंगी कि कोई अभी के दिन में, जैसे जगह की दुनिया, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने सारे आ गए हैं, तो इसमें बहुत से खिलाड़ी हमारे जो जूनियर बच्चे हैं, अच्छे खिलाड़ियों का मैच देखते हैं और कहना चाहते हैं कि मैं इसी तरह बनूंगी, मैं इसी तरह खेलना चाहूंगी, है ना। लेकिन मेरे लिए ऐसा कोई एक को आइडियल मानना मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, बस ये ठान लिया था कि मैं उनको देख करके, जो हमारे सीनियर्स रहे हैं, जो कि हमारे पिताजी के द्वारा भी वो बात बताई जाती थी, क्योंकि हमारे गांव साइड से भी कई सीनियर खिलाड़ी हैं और वो रेलवे में कार्यरत थे पहले से, तो
1: जी
0: पिताजी कहा करते थे कि आपको भी इनकी तरह खेलना है, बनना है, एक दिन रेलवे में नौकरी भी करनी है। 6th क्लास में हमारी हेडमिस्ट्रेस थी, वो पूछी थी कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं, तो
1: जी
0: मैंने बिना सोचे समझे, कई बोले कि हम टीचर बनना चाहते, कई कुछ बनना, मैं इतना लिखी, मुझे समझ नहीं था कि रेलवे की नौकरी क्या है 6th क्लास में, लेकिन मैंने लिख दिया था कि उसमें कि मैं रेलवे में नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं सचमुच रेलवे में ही काम करूंगी, और आज है वो दिन कि रेलवे में मैं काम कर रही हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी के लिए लोगों को किसी को अपना आइडियल बनाना, दिखना, देखना, ये सब आसान है, लेकिन आने वाली पीढ़ी में कौन क्या करेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी का अपना अपना कुछ खूबी होता है। हाँ, हम यही कहना चाहेंगे उन खिलाड़ियों के लिए कि जो भी वो करने आए हैं उसको पूरी लगन के साथ करें, तो डेफिनेटली जो है कि उनका एम जो है वो उनको मिलेगा।
1: जी बिल्कुल सुमराई जी, आज झारखंड की बेटियां खेलों में एक नई पहचान बना रही हैं। क्या आपको लगता है कि युवा पीढ़ी मानसिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और बेबाक हैं? आपने उनके नजरिया में क्या बदलाव देखा है?
0: जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि पहले की तुलना और अब की बात करें तो बहुत ही अंतर है हर एक चीज में।
1: जी
0: इक्विपमेंट में देखिए, ट्रेनिंग प्रोसेस देखिए, साधन देखिए, सभी चीजों को लेकर पहले बहुत ही समस्याएं थी, जो कि इक्विपमेंट्स नहीं मिलते थे, खिलाड़ियों के पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे। इन समस्याओं के बीच में भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले, और मैं उन सीनियर का बहुत ही रेस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने विश्व स्तर पर, ओलंपिक पर मेडल भी प्राप्त किया हुआ है, और अभी के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही सुविधाएं मतलब प्राप्त है अभी, तो इन सब को देखते हुए अभी के खिलाड़ियों को पीछे मुड़कर तो नहीं ही देखना चाहिए, लेकिन एक डिमेरिट ये भी आ रही है कि जिसमें हम कुछ छोटा चीज प्राप्त करते हैं तो उसके बाद से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस की भी जरूरत होती है, तो उन सब चीजों को हमारे बच्चों को ट्रेन करने की आवश्यकता है। बस इन लोगों को दिमागी तौर पर स्ट्रोंग होना है, फिजिकल स्ट्रोंग होना है, और डिफिकल्टीज को टिकल करने की क्षमता रखनी होगी,
1: बिल्कुल।
0: तभी ये हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे।
1: ये एक तरफ क्षमता है सुमराई जी, और दूसरी तरफ संसाधन। राज्य में खेलों के वर्तमान स्तर और अवसंरचना को देखते हुए क्या आपको लगता है कि हमारी बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बड़ा धमाका करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?
0: जी बिल्कुल, खिलाड़ियों को जब मेडल प्राप्त हो रहे हैं तो मोटिवेशन के तौर पर उनको मोटिवेट किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है, तो इन सब को देखते हुए हमारे बच्चे भी चाह रहे हैं कि अब उसमें आए, तो संसाधन तो कहीं ना कहीं कई बार कमी भी आ जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो इन संसाधनों के बीच में से ही उन बच्चियों को, उन

0: खिलाड़ियों को आना है और प्रूव करना है अपने आप को ताकि वे देश के लिए खेल सकें, और इनमें है वो कैपेबिलिटी कि वे कर सकते हैं, बस गाइडलाइंस की जरूरत है।
1: जब आप मैदान में उतरी थी और आज की जो महिला हॉकी टीम है, दोनों दौर के खेल ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम में आपको क्या सबसे बड़ा अंतर नजर आता है?
0: ये तो बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिली जिस तरह से टीम के साथ में सपोर्टिंग स्टाफ जो जाते थे। इंडियन कंटिजेंट के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक मसाजर ऐसे करके प्रोवाइड की जाती थी। अब है कि पर्टिकुलर टीम, पर्टिकुलर प्लेयर्स, इनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट जा रहे हैं, मसाजर्स जा रहे हैं, वीडियो एनालिटिक्स जा रहे हैं, आपको साइकोलॉजिस्ट जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और पहले ये भी था 70 मिनट्स थे तो डेफिनेटली और खिलाड़ी बहुत फिट हुआ करते थे, अभी भी फिट है, गेम फास्ट में है, कुछ बदलाव आए हैं जिसकी वजह से अभी खिलाड़ियों का खेलने का तरीका में बदलाव आया है। पर पहले के खिलाड़ी, बहुत खिलाड़ी जितने भी प्लेयर्स थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मेंटली भी फिजिकली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे थे। मैं उन लोगों के लिए तो सच में मैं कहना चाहूंगी कि वे बहुत ही अच्छे प्लेयर्स थे, और अभी सुविधाएं पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है।
1: जमीनी स्तर पर आज भी कई बच्चियां खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने को लेकर परेशान रहती हैं या उनके परिवार झिझकते रहते हैं। अपने अनुभव के आधार पर आप उन्हें और उनके माता पिता को क्या सलाह देना चाहेंगी स्मिराई जी?
0: बिल्कुल मैम, लेकिन शायद मुझे नहीं लग रहा है कि अभी के पेरेंट्स पहले की सोच की ओर पीछे हैं। अभी मुझको लग रहा है बच्चे बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जिसमें कि हमारे झारखंड सरकार के आवासीय या डे बोर्डिंग सेंटर्स जो है इनमें ही जगह नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स जागरूक हैं और अपने बच्चों को खेल की ओर भेजने का प्रयास भी कर रहे हैं, और खेल में आने से एक हम है कि जो गलत आदतों से भी हम दूर हो सकते हैं। और पढ़ाई की बात करें तो दोनों को तालमेल बनाने के लिए मेहनत तो करना होगा। कई बार है ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के या टूर्नामेंट्स की वजह से हम कई बार अपने स्कूल्स को, पढ़ाई को मतलब छोड़ना पड़ता है उस बीच में, लेकिन हमें साथ साथ उसको लेके चलना है। जहाँ भी हमको, जहाँ भी खिलाड़ियों को जाना होता है, अपनी किताब कॉपियां लेकर जाएं और जो भी है उनको पढ़ाई करते ही रहना चाहिए। ये साल सभी खिलाड़ियों के साथ आता है, अगर वो खेल रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पढ़ाई वो रेगुलर क्लास नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए सेल्फ स्टडी की बहुत ही जरूरी है और करना है, तभी जा करके हम आगे पढ़ पाएंगे। क्योंकि आज के दिन में शिक्षा बहुत ही जरूरी है। अगर हम एजुकेट है तो हम गेम के सभी रूल रेगुलेशन को समझ सकते हैं, टेकल कर सकते हैं, ग्राउंड में ओपोनेंट को टेकल कर सकते हैं, अंपायर से बातचीत करने का तरीका जान सकते हैं। अगर हम एजुकेट नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है कि हम बात करने में झिझकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और अब चलते चलते खेलों में अपना करियर बनाने का सपना देख रही झारखंड और पूरे देश की बेटियों के लिए आपका क्या मूल मंत्र या संदेश होगा?
0: बिल्कुल, मैं उन सभी खिलाड़ियों के लिए जो अभी शुरुआती दौर में है उनसे यही कहना चाहूंगी कि जो सिखाया जा रहा है उसको ध्यान पूर्वक सुने, सीखें और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ एक लक्ष्य निर्धारित करें, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करके बड़ों का गाइडेंस, कोचों का मार्गदर्शन में वे आगे बढ़ें। सबसे बड़ी बात है कि हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।
1: जी सखियों, पूरा विश्वास है कि अपने राज्य की पूर्व महिला हॉकी खिलाड़ी और कैप्टन रही सुमराई टेटे जी की बातों का लाभ आप अपनी बेटियों की सुनहरे भविष्य के लिए जरूर उठाएंगी। सुमराई टेटे जी, आपने बहुमूल्य समय निकाला और श्रोता सखियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता, खेल के क्षेत्र में उभरते खिलाड़ी। इस विषय पर भेंट वार्ताकार थी पूर्व भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी और कप्तान सुमराई टेटे, और इनसे बातचीत कर रही थी मधु चौबे।
1: बहनों,
2: खुशियों से भरा जीवन।

0: चेहरे पर मुस्कान, स्वस्थ तन, प्रसन्न मन और हर दिन नई ऊर्जा, भला कौन नहीं चाहता। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। ऐसे में अगर कोई आसान और मजेदार तरीका है खुद को स्वस्थ रखने का तो वो है खेल।
1: बिल्कुल, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ तनाव, थकान और अनियमित दिनचर्या आम हो गई है, वहाँ खेल हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। बहनों, खेलकूद शरीर को केवल मजबूत ही नहीं बनाते बल्कि मन को भी प्रसन्न रखते हैं।
0: क्योंकि जब हम खेलते हैं तो शरीर में एक नई स्फूर्ति आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। बहनों, खासकर महिलाओं के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियां बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, अक्सर घर परिवार की जिम्मेदारियों में हम खुद के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं बहनों, लेकिन दिन में थोड़ी देर टहलना, बैडमिंटन खेलना, योग करना, बच्चों के साथ पार्क में खेलना या हल्का फुल्का व्यायाम भी हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करती है।
0: और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से कुछ खेल आप अपने घर के आंगन या छत पर भी कर सकती हैं, खेल सकती हैं, और इससे परिवार या दोस्तों के साथ खेलकर मनोरंजन भी कर सकती हैं अपना।
1: हाँ बहनों, बच्चों के लिए खेल जितने जरूरी हैं उतने ही बड़े बुजुर्गों के लिए भी। खेल बच्चों में अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, वही बड़ों को बीमारियों से दूर रखने में सहायक होते हैं।
0: डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं बहनों कि रोजाना कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तेज चाल से चलना, हल्की दौड़, साइकिलिंग करना या बच्चों के साथ कुछ देर खेलना भी अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में एक छोटा लेकिन असरदार कदम हो सकता है।
1: बिल्कुल, याद रखिए बहनों, खेल का मतलब केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी है। इसलिए आप सब भी अपने जीवन में खेल को जगह दें, खेल के लिए समय जरूर निकालें।
0: क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन की हर जिम्मेदारी को मुस्कुराते हुए निभा पाएंगे।
1: हाँ बहनों, और इसी के साथ कार्यक्रम की आज की समय सीमा अब समाप्त होने को चली। चलते चलते आपको बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की थी। अब अपनी रेडियो सखी रानी
0: और मधु को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पेश है एक ऐसा गीत जो प्यार, मासूमियत और खूबसूरत एहसासों से भरा हुआ है। ये गीत है कयामत से कयामत तक का सदाबहार नगमा, गजब का ये दिन। इस गीत को अपनी मधुर आवाज से सजाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಇದೆ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: ಅಬ್ ಸುನಿಯೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಧಡ್ಕನ್ ಕಾ ಖೂಬಸೂರತ್ ಗೀತ್. इस गीत को आवाज दी है अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण ने. गीत के बोल हैं समीर के और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने.

अब सुनिए फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का सुपरहिट गीत। इस गीत को अपनी दमदार आवाज दी है कमाल खान ने, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

गीत चंदा चमके, इस गीत को अपनी आवाज दी है बाबुल सुप्रियो, महालक्ष्मी अय्यर, मास्टर अक्षय भागवत और आमिर खान ने। गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी और संगीत दिया है।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो
1: पके पेड़।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म एनिमल का बेहद लोकप्रिय गीत पहले भी मैं। इस गीत को अपनी सुरीली आवाज दी है विशाल मिश्रा ने। गीत के बोल लिखे हैं राजशेखर ने और संगीत भी विशाल मिश्रा का है।

इस गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिए समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज

पुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The meeting will deliberate on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling and create sustainable employment opportunities across the country. Discussions will also focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure and partnerships while ensuring accountability and measurable impact. In a social media post, Mr. Modi said, guided by the spirit of cooperative federalism, centre and states are working together to accelerate India's development journey. He added that the collective efforts of the centre and states will play a pivotal role in realising the shared vision of Viksit Bharat. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, which emphasizes the well-being and development of every Indian regardless of age, region, gender or socio-economic background. The government has waived excise duty on certain variants of ethanol-blended petrol. In a notification, the Finance Ministry announced that petrol blended with 22, 25, 27 and 30% ethanol has been exempted from central excise duty. The Ministry said all four fuel grades will now attract a nil rate of excise duty. The move is aimed at strengthening India's ethanol blending program, which seeks to reduce dependence on imported crude oil, cut carbon emissions and enhance demand for domestically produced ethanol. Union Minister for Railways and Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav virtually inaugurated a 20-kilowatt FM transmitter at Ramgarh in Jaisalmer district of Rajasthan during a program held at the Akashvani premises in Jaipur today. The event was attended by Jaipur MP Manju Sharma, Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi and Akashvani Director General Rajiv Kumar Jain, among other senior officials. Addressing the gathering, Union Minister Vaishnav, focusing on strategic infrastructure, highlighted the government's commitment to strengthening communication in border regions. He said today, a major initiative to cover border areas has commenced in Rajasthan. The minister said the plan is to provide comprehensive coverage across the entire border belt of the country, stretching all the way from Kashmir.
1: Today, a new 20 kilowatt, which will cover not only the district but also surrounding regions. About an 80-kilometer radius and nearly 20,000 square kilometers. This is a significant step forward.
0: All three Indian seafarers who were initially reported missing after the tragic incident aboard the commercial vessel Palau-flagged MT Sethubalo have now been confirmed dead. The tanker was hit off the coast of Oman in a suspected U.S. missile strike. In a social media post, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal said the bodies of three seafarers have been located and identified. Trinamool Congress MP Prakash Chigbaraik has resigned as a member of the Rajya Sabha. He has sent his resignation letter to Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan. Earlier, Trinamool Congress leaders and Rajya Sabha members Shukhendu Shekhar Rai and Sushmita Dev had resigned from both the Rajya Sabha and the party. The United States carried out a new round of military strikes on Iranian targets, prompting Tehran to announce the closure of the strategically vital Strait of Hormuz and launch retaliatory actions against regional locations hosting U.S. forces. U.S. Central Command said it had completed a second consecutive day of self-defense strikes targeting Iranian air defense systems, radar installations, communications infrastructure, and surveillance capabilities in response to what Washington called continued Iranian aggression. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू। विकसित भारत और समावेशी विकास पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ले रहे हैं भाग। झारखंड हाईकोर्ट ने भू माफियाओं के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। राज्य सरकार ने तैयार किया विशेष एसओपी। कोर्ट ने दिया 6 हफ्ते का समय। राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार रोकने के लिए लगेंगे स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे। गति सीमा तोड़ने पर कटेगा ऑनलाइन चालान। रांची सदर अस्पताल बनेगा राज्य का पहला टेली एसएनसीयू और ई संजीवनी हब। ग्रामीण मरीजों को ऑनलाइन मिलेगी विशेषज्ञ सलाह। और रांची में आयोजित झारखंड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप संपन्न। बालक वर्ग में तनिष्क और बालिका वर्ग में कीर्ति बनी विजेता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता, कौशल विकास और स्थायी रोजगार सृजन के उपायों पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और शासन से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा केंद्रित है। इस वर्ष का मुख्य विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। राज्य में जमीन कब्जे के बढ़ते मामलों पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया। सरकार की ओर से बताया गया कि मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने विशेष एसओपी तैयार कर लिया है। अधिवक्ता अत्तानु बैनर्जी ने बताया कि अदालत ने इस एसओपी की समीक्षा करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़े अन्य आवश्यक कदमों के लिए राज्य सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है।
3: एक नियम बनाया गया है, वो सरकार के पास अभी भेजा गया है। कोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है। जो प्रस्ताव गया है इसको आपको लागू करना है, नहीं लागू करना है, जो भी निर्णय लेना आप 6 हफ्ते के अंदर लीजिए। कोर्ट ने मुझे भी ये कहा है।

0: उचित कानूनी रूप से वो सुझाव भी हम 10 दिन के अंदर ये वहां पर दे दें।
1: राज्य से गुजरने वाले नेशनल और स्टेट हाईवे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार ने नई तकनीक अपनाने का फैसला किया है। अब हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा कोषांग की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि अधिकांश हादसे वाहनों की तेज गति के कारण होते हैं। इसी को देखते हुए बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी कैमरा एनफोर्समेंट व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। बोकारो के सेक्टर 12 में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लेने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह बोकारो पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन और सेल के अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीन हस्तांतरण और बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।
2: 27 मार्च में इसको चालू कर दिया जाए और NMC का जो नॉर्म्स है उसमें हम लोग मार्च तक अप्लाई कर देंगे और पढ़ाई तो है वो अगस्त से ही शुरू होगा। सबसे पहले मेडिकल जो कॉलेज के अंतर्गत हॉस्पिटल है वो चालू करेंगे मार्च के 27 में और उसके बाद पूरा मेडिकल कॉलेज जो है वो करीब करीब जुलाई अगस्त के आसपास चालू।
1: राज्य सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए रांची सदर अस्पताल को नए ई संजीवनी हब के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है। इसके तहत राज्य भर के जिला अस्पतालों की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयां ऑनलाइन सदर अस्पताल से जोड़ी जाएंगी, जिससे गंभीर नवजातों की विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी हो सकेगी। श्रावणी मेला से पहले 25 जुलाई को देवघर बासुकीनाथ फोरलेन शुरू हो जाएगा। 999 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस 45 किलोमीटर से अधिक लंबे फोरलेन का 80% से अधिक काम पूरा हो चुका है। NHAI के अनुसार रेलवे ओवरब्रिज पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा होने के बाद अब निर्माण अंतिम चरण में है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के लक्ष्मीपुर में गोवर्धन योजना के तहत स्थापित बायोगैस प्लांट से 32 घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति शुरू हो गई है। महिलाओं द्वारा संचालित इस 1500 किलोग्राम क्षमता वाले प्लांट से लकड़ियों पर निर्भरता खत्म हुई है और खेतों के लिए जैविक खाद भी मिल रही है। परियोजना की सफलता पर मेंटेनेंस मैनेजर नीतीश राज ने कहा कि मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और LPG की आसमान छूती कीमतों के बीच यह आत्मनिर्भर पहल बेहद कारगर साबित हो रही है।
3: तो और हम लोग पाइप से गैस दिए, गैस देने के बाद सुबह शाम जिस तरह हम रेगुलर बेसिस पर जो गैस जलता है उस हिसाब से प्रतिदिन हम लोग गैस जलता है सभा पे, जिसमें अभी LPG की किल्लत होने के कारण हमारे सबसे वरदान साबित होता है गोवर्धन योजना।
1: बोकारो शहर के सिटी थाना क्षेत्र स्थित दूंदीबाद फल मंडी में कल देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 4 फल दुकानें और कई खटाल पूरी तरह नष्ट हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और BSL की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जमशेदपुर पुलिस ने साक्षी बाजार से लापता मासूम बच्ची आफरीन को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची की तलाश के लिए गठित SIT ने 50 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल कर इस सफलता को हासिल किया। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि मामले में पुलिस ने एक निसंतान दंपति को हिरासत में लिया है।
4: 50 से अधिक CCTV देखे गए और उसका जब जो ट्रेन था जो उसके द्वारा रास्ता बंद किया गया था और ये जो 2 व्यक्ति हैं इनका नाम है अब्दुल जसीम और अफसाना बेगम। इन्होंने देखा कि उस दिन मार्केट में बच्ची अकेली है तो ये उसको अपने साथ लेकर चले गए।
1: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 125 अंक बढ़कर

74,109 पर और निफ्टी 29 अंक बढ़कर 23,244 पर पहुंच गया था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को आज से राहत मिल सकती है, क्योंकि प्री मॉनसून गतिविधियां तेज होने जा रही हैं। मौसम विभाग ने रांची, धनबाद और देवघर समेत कई जिलों में आंधी, वज्रपात और बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मुख्य मॉनसून अगले 4 दिनों में संताल परगना के रास्ते राज्य में प्रवेश करेगा। रांची में आयोजित 25वीं झारखंड जूनियर स्टेट शतरंज चैंपियनशिप में बालक वर्ग में तनिष्क कुमार और बालिका वर्ग में कीर्ति कुमारी ने खिताबी जीत हासिल की है। प्रतियोगिता के शीर्ष 4-4 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इसी समारोह में झारखंड अंडर 7 और अंडर 11 शतरंज चैंपियनशिप का भी विधिवत उद्घाटन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू। विकसित भारत और समावेशी विकास पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ले रहे हैं भाग। झारखंड हाईकोर्ट ने भूमाफियाओं के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। राज्य सरकार ने तैयार किया विशेष SOP। कोर्ट ने दिया 6 हफ्ते का समय। राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार रोकने के लिए लगेंगे स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे। गति सीमा तोड़ने पर कटेगा ऑनलाइन चालान। रांची सदर अस्पताल बनेगा राज्य का पहला टेली SNCU और ई संजीवनी हब। ग्रामीण मरीजों को ऑनलाइन मिलेगी विशेषज्ञ सलाह। और रांची में आयोजित झारखंड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप संपन्न। बालक वर्ग में तनिष्क और बालिका वर्ग में कीर्ति बनी विजेता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है अब उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। हमारे आज के कलाकार हैं गिरजा देवी। इनसे सुनिए राग देव गंधार।

उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम मनोरंजनी का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। हमारे आज के कलाकार थे गिरिजा देवी। इसी के साथ आज का मनोरंजनी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है अब सुगम संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं हरिहरण। इनसे आप सुनेंगे चंद गजल।

सुगम संगीत के अंतर्गत लीजिए इस कार्यक्रम का अंतिम गजल पेश है, जिसे अल्फाज है हकीम नासिर के।

सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे मशहूर गजल गायक हरिहरन की दिलकश आवाज में चुनिंदा गजलें। इसी के साथ आज का सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़।

0: तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
0: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेस में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है।

0: जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हमारे वीर फौजी साथियों को समर्पित फिल्म संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम जय भारती। देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के साहस, समर्पण और देशभक्ति को नमन करते हुए प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया से। देशभक्ति से ओतप्रोत गीत देश मेरे, स्वर है अरिजीत सिंह के, संगीत दिया है ऑर्को ने और बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: फिल्म भाग मिल्खा भाग से प्रस्तुत है बेहद सुरीला और भावपूर्ण गीत ओ रंगरेज। स्वर है जावेद बशीर और श्रेया घोषाल के, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और बोल लिखे हैं प्रशुन जोशी ने।

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से प्रस्तुत है जोश जुनून और देशभक्ति से भरपूर गीत मेरा रंग दे बसंती चोला। स्वर है सोनू निगम और मनमोहन वारिश के, संगीत दिया है ए आर रहमान ने और बोल लिखे हैं समीर ने।

फिल्म बजरंगी भाईजान से प्रस्तुत है दिल को छू लेने वाला गीत जिंदगी कुछ तो बता। स्वर है जुबिन नौटियाल के, संगीत दिया है प्रीतम ने और बोल लिखे हैं निलेश मिश्रा ने।

इसी खूबसूरत गीत के साथ फौजी साथियों को समर्पित फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारतीय यहीं संपन्न होता है। देश की सीमाओं पर तैनात हमारे वीर जवानों को शत शत नमन।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता की और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। नीति आयोग की बैठक के दौरान देश के विकास को रफ्तार देने के लिए समन्वय और सहयोग पर बल दिया जा रहा है। राज्यों ने भी अपनी आवश्यकताओं से केंद्र सरकार को अवगत कराया और विकसित राष्ट्र निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। इस बैठक में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य का पक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड को भी केंद्र सरकार की ओर से देवघर एम्स, हवाई अड्डा, वंदे भारत ट्रेन, विभिन्न सड़क परियोजनाओं और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की सौगात मिली है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है।
1: जो देश में विकास और देश की जनता का विश्वास और साथ ही गरीब कल्याण योजना, अगर इसकी फेहरिस्त को आप देखेंगे वो लंबी, 12 वर्षों में उन्होंने जितना काम किया वो अपने आप में अद्भुत। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, इससे स्पष्ट होता है कि ये कोई सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा का वो तपस्या का वो इकरार है।
0: राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी की समय सीमा अब से कुछ देर बाद दोपहर 3 बजे खत्म हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों, झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणब झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। तीनों ने चुनावी रणक्षेत्र में डटे रहने का फैसला किया है और किसी ने नाम वापस नहीं लिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 18 जून को राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद नगर निगम ने क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नगर आयुक्त आशीष

0: लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि देवघर, दुमका, गोड्डा, हजारीबाग, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज जिले में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा और गरज के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। एनजीटी के निर्देश पर झारखंड में बालू खनन, भंडारण और परिवहन पर 15 अक्टूबर तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मॉनसून में नदियों का जलस्तर और बहाव तेज होने से पर्यावरण और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए राज्य के सभी 444 बालू घाटों में उत्खनन और परिवहन बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छिपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
0: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
0: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
0: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
0: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भून कर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं।

0: का स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
0: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी,
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
1: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

चार नामक फ्रांसीसी महिला पौंडेचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पौंडेचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पौंडेचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडेचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ आप बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी,
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
0: जी हाँ,
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, न कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
0: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
1: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
0: जी,
1: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या न करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आएं। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
0: 6 इंद्रियों में भला ये कैसे हो सकता है? हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
1: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे

0: का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे, यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला।

खो गई इस गीत में। अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: ठेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना, और हाँ अकेले नहीं किसी के साथ, और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहाँ।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार। उमंग, उमंग।

एनसीईआरटी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे और इसी के साथ आज का उमंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। नमस्कार श्रोताओं, कड़ी धूप और उमस के लंबे दौर के बाद रांची शहर में हुई जोरदार बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। ठंडी हवाओं और बारिश के फुहारों के बीच आपका स्वागत आपके पसंदीदा कार्यक्रम रांची मेलोडीज में। मैं हूं विश्वजीत और अगले कुछ समय तक हम साथ सुनेंगे बेहतरीन फिल्मी गीतों का सिलसिला। तो शुरुआत करते हैं एक चुलबुले और मस्ती भरे गीत से, फिल्म कोई मिल गया का ये लोकप्रिय गीत इधर चला मैं उधर चला। गीत को स्वर दिया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, संगीत है राजेश रोशन का और बोल लिखे हैं इब्राहिम अक्ष ने।

बारिश की रिमझिम फुहारें, हाथों में गर्मा गर्म चाय, साथ में स्वादिष्ट पकौड़े और सुरीले गीतों के साथ ऐसे खुशनुमा मौसम में सुनिए फिल्म गुरु का बेहद रूहानी गीत तेरे बिना। स्वर है एआर रहमान, चिन्मयी मुर्तजा खान और कादिर खान के। संगीत दिया है एआर रहमान ने और बोल लिखे हैं गुलजार ने। आइए इस खूबसूरत गीत का आनंद लेते हैं।

रांची में यही तो खास बात है, चाहे दिन में कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े, एक अच्छी बारिश पूरे मौसम का मिजाज बदल देती है। आसमान में घने बादल छाए हैं, हवाओं में मिट्टी की सौंधी खुशबू खुली हुई है, और ऐसे में सुहाने मौसम के लिए अगला गीत बिल्कुल उपयुक्त है। सुनिए आयुष्मान खुराना के स्वर में।

बारिश के इस सुहाने मौसम में सुनिए दिल को छू लेने वाला गीत बारिश, बरसात की धुन। स्वर है जुबिन नौटियाल के, संगीत दिया है रोचक कोहली ने और बोल लिखे हैं रश्मि विराग ने। आइए बारिश के फुहारों के साथ इस खूबसूरत गीत का आनंद लिया जाए।

अभी आपने सुना फिल्म चमेली का खूबसूरत गीत भागी रे मन, सुनिधि चौहान की सुरीली आवाज, संदेश शौंडिल्य का मधुर संगीत और इरशाद कामिल के भावपूर्ण बोल। और अब सुनिए बारिश के इस रिमझिम फुहारों के बीच फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का सदाबहार गीत रिमझिम रिमझिम। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की मधुर आवाजों में सजा यह गीत हर मौसम को और भी खुशनुमा बना देता है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म लापता लेडीज से, सचनी। स्वर है अरिजीत सिंह के, संगीत दिया है राम संपत ने और बोल लिखे हैं प्रशांत पांडे ने।

0: विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य का पक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री मरांडी ने कहा कि केंद्र को भी झारखंड को भी केंद्र सरकार की ओर से देवघर एम्स, हवाई अड्डा, वंदे भारत ट्रेन, विभिन्न सड़क परियोजनाओं और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की सौगात मिली है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी की समय सीमा खत्म हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। तीनों में से किसी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया। अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 18 जून को राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान कराया जाएगा। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से 21 जून को ली जाने वाली नीट की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर रांची के 21 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन के लिए केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है एसी का उपयोग सावधानी से करें। इसी कार्यक्रम में आपको भेंटवार्ता में सुनवाएंगे कॉन्टेक्ट लेंस का बढ़ता क्रेज। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर अमित कुमार जायसवाल, भेंटकर्ता होंगे वसंत कुमार। वाचन एवं संयोग वसंत कुमार का है। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर फिर से उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या क्या नई जानकारियां लेकर आए हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि एसी का उपयोग हमें सावधानी से क्यों करना चाहिए। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टैक्ट लेंस के बढ़ते क्रेज के बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं वैज्ञानिक इयान डोनाल्ड के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे OMR क्या है इसके बारे में और ये कैसे काम करता है इसके बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या नई जानकारी आपको देने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि एसी का उपयोग हमें सावधानी से क्यों करना चाहिए इसके बारे में। गर्मी का मौसम आते ही हम सबसे पहली जिस चीज की तलाश करते हैं वो है ठंडक और छांव की, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर हमें गर्मी से राहत मिले, हमें आराम मिले और गर्मी से जो परेशानी होती है उसे दूर कर सके। लेकिन गर्मी से राहत पाने के लिए एयर कंडीशनर यानी एसी आज हमारी जरूरत बन चुकी है। बढ़ते तापमान के कारण लोग घरों, दफ्तरों, अस्पतालों और वाहनों में एसी का उपयोग कर रहे हैं। एसी हमें ठंडी और आरामदायक हवा तो देती ही है, लेकिन इसका उपयोग यदि सावधानी पूर्वक नहीं किया गया तो स्वास्थ्य

0: स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए इसके साथ में बिजली की जो खपत है इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे बजट पर भी ढाल सकता है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो कई लोग एसी का तापमान बहुत कम कर देते हैं। अत्यधिक ठंडे वातावरण में लंबे समय तक रहने से सर्दी, जुकाम, गले में खराश, सिर दर्द, त्वचा का सूखापन और सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार एसी का तापमान 24 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे शरीर को आराम भी मिलता है और बिजली की बचत भी होती है। इसके अलावा एसी वाले जो कमरे हैं लंबे समय तक उसमें रहने से शरीर को प्राकृतिक वातावरण की आदत जो है वो कम हो जाती है। जब व्यक्ति अचानक बहुत ठंडे कमरे से बाहर तेज धूप में निकलता है तो शरीर पर उसका प्रतिकूल यानी कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए समय समय पर खुली हवा में भी हमें समय बिताना बहुत आवश्यक है, न कि एसी वाले कमरे में 24 घंटा यानी कि बंद होकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। एसी की नियमित सफाई और सर्विसिंग ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए समय समय पर साफ करवाना और एसी की जांच करवाते रहना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि बिजली की खपत की, यानी कि एसी घर में जब लग जाती है तो बिजली का जो खर्च है, जो बिल है, वो भी काफी बढ़ने लगता है। सबसे अधिक बिजली खर्च करने वाले उपकरणों में अगर माना जाए तो एसी ही होता है गर्मी के समय में। यदि इसका उपयोग आवश्यकता से अधिक किया जाए तो बिजली का जो बिल है वो भी काफी बढ़ सकता है। इसके अलावा एसी का पर्यावरण पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक बिजली की खपत का मतलब है अधिक ऊर्जा का उत्पादन, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ पुराने एसी में उपयोग होने वाली जो गैस है वो पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक हो सकती है। इसलिए ऊर्जा दक्षता वाले यानी अधिक स्टार रेटिंग वाले एसी का उपयोग करना अच्छा माना जाता है। श्रोताओं, एसी हमारे जीवन को आरामदायक बनाता है, लेकिन इसका विवेकपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। सही तापमान, नियमित सफाई, सीमित उपयोग और ऊर्जा संरक्षण के उपाय अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि एसी का उपयोग हमें सावधानी से क्यों करना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भेंटवार्ता में। आज हम कॉन्टेक्ट लेंस का बढ़ता क्रेज क्यों है इतना ज्यादा, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर अमित कुमार जायसवाल, जो कि एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए।
0: हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आज के समय में आंखों में लोग थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, और आंखों में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताएं।
1: सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सीजनल एलर्जी की। बहुत लोगों को आंख में लाली ना जाना, खुजली होना, और दूसरा अभी क्या है, लोगों को कोरोना के बाद जो बच्चे बहुत सारे मोबाइल करते थे, तो उन लोगों का बहुत सारे लोगों को चश्मा लग गया है। तो ये दो मेन समस्याएं अभी हैं।
0: यानी कि ये दो प्रमुख समस्याएं हैं जो आप अभी ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आंखों में जो समस्याएं होती है वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ज्यादातर परेशान करती है आंखों को, जिससे बचना जरूरी है?
1: अभी के दौर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को आ रही है वो मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ करने के बाद लोगों को ड्राई आई, जो हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं, उसकी समस्या आ रही है। और साथ ही साथ बच्चों में अभी इतना ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप यूज़ हो रहा है कि लोगों में, बहुत सारे लोगों को मैंने अभी देखा है कि पिछले एक साल में बहुत से नए बच्चों को चश्मा का पावर लग गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नियर वर्क करने के कारण हो रहा है, पहला चीज़। दूसरा, जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम मैंने बताया, इसमें क्या होता है, जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं या कंप्यूटर देख रहे हैं तो आपकी पलक झपकती नहीं है, आप लगातार कोई चीज़ को देखते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको आँखों में जो टियर फिल्म होता है वो इवेपोरेट होकर आँख को ड्राई कर देता है। तो इस कारण लोगों को फिलहाल तो ये ज़्यादा समस्या है। और जो लोगों का स्क्रीन टाइम है मोबाइल और लैपटॉप में, जो बहुत देर से लोग बैठे रहते हैं, तो उसके कारण बहुत सारे लोगों का आंखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम और आंखों में पावर का आ जाना, वो बहुत कॉमन हो गया है अभी के समय में।
0: तो ये प्रमुख वजह है जिसके कारण अभी ज़्यादातर मरीज इसके देखे जा रहे हैं। तो अब जैसा कि हमने बात की कि कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो एक आम सा सवाल है कि कॉन्टैक्ट लेंस क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: कॉन्टैक्ट लेंस एक बहुत ही पतला झिल्ली प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, जो 1 मिलीमीटर से भी कम का थिकनेस रहता है। इसे हम अपने पुतलियों के ऊपर आसानी से लगा सकते हैं, उसमें पावर लगा रहता है जिससे चश्मा पहन

0: करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से ही हो चुकी होगी, लेकिन आज के समय में इसका जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये बढ़ता हुआ क्रेज हमारी आंखों के लिए सही है या फिर चश्मा ज्यादा बेहतर है आंखों के लिए?
0: देखिए, अभी ये डिपेंड करता है कि कॉन्टैक्ट लेंस कौन पहनना चाहता है, और कभी कभी कॉन्टैक्ट लेंस के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का सबसे मेन रीज़न होता है कॉस्मेटिक। लोग चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग वो चाहते हैं कि मैं चश्मा ना पहनूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है कि थोड़ा ज़्यादा पावर होता है तो चश्मा थोड़ा मोटा दिखता है, तो लोगों को देखने में थोड़ा भद्दा लगता है। और जनरली जो फीमेल होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो चश्मा नहीं पहनना चाहती हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे शादी वगैरह होना है तो उसमें भी लोग वो चाहते हैं कि लोग ना जाने कि मैं चश्मा ज़्यादा पावर है, तो वो लोग भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना चाहते हैं। ज़्यादातर लड़कियाँ यूज़ करती हैं क्योंकि कॉस्मेटिकली वो नहीं चाहती हैं कि उन्हें चश्मा पहने वो।
1: मतलब कोई ये ना जाने कि मुझे आंखों की समस्या है और इसीलिए ज्यादातर आज इसका क्रेज बढ़ गया है।
0: सही है।
1: क्या इसके बहुत सारे प्रकार भी हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे तरह के लेंसेस होंगे जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं?
0: हाँ, डेफिनेटली होते हैं। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि मैं आईज का कलर ब्लू कर लूँ, मेरा आईज ब्राउन है तो मैं थोड़ा ब्लू लगाऊं तो मेरा थोड़ा आईज का कलर अच्छा दिखाई देगा। और कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे केराटोकोनस है, जिसमें आँख की पुतली थोड़ी पतली हो जाती है, तो उसमें एक अलग तरह का लेंस यूज होता है। तो होते हैं मेडिकली बहुत तरह के कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, तो इसीलिए हमेशा कभी भी आपको कॉन्टैक्ट लेंस लेना है तो डॉक्टर के सलाह पर ही पहने,
1: यानी कि बिना डॉक्टरी सलाह के लेंस यूज करना खतरनाक हो सकता है।
0: खतरनाक हो सकता
1: तो
0: है।
1: ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जिनको किसी तरह की समस्या नहीं है, फिर भी वो कॉन्टैक्ट लेंस।
0: नहीं, वो नहीं पहनते हैं। जनरली वो फिल्मों में यूज़ होता है कि
1: अच्छा
0: आईज का कलर चेंज करना है तो होता है, ऐसे जनरली लोग नहीं यूज़ करते।
1: अच्छा इसे लगाने का जो तरीका है और इसके रख रखाव का तरीका, आंखों में कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में?
0: ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इसको ठीक से नहीं समझेंगे कि कैसे यूज़ करना है तो आपको आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहले हाथ को धो लिया जाता है, उसके बाद हैंड क्लीन करके अच्छे से कॉन्टैक्ट लेंस, एक पहनने का तरीका होता है कि पहले अपने दो फिंगर्स के बीच ले, अपने पलक को नीचे खींच के ऊपर देख के आँख के ऊपर लेंस लगाना होता है। अगर इस तरह से आप नहीं पहनेंगे, अगर गंदे हाथ से पहनेंगे, गंदे हाथ से खोल लेंगे, उसको निकाल लेंगे, तो आँखों में गंदे हाथ से इन्फेक्शन चला जाता है। और बहुत ज़्यादा समय भी, अगर कुछ लेंसेस होते हैं जिसको आपको ज़्यादा समय तक नहीं यूज़ करते हैं, उसका एक एक्सपायरी होता है, जैसे एक मंथ में उसको डिस्कार्ड कर देना है, या एक हफ्ता या एक महीने, इस तरह उन लोगों को उस लेंस को डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि हम लेंस लगा रहे हैं तो इसको जब तक चल रहा है चलाएं, उससे भी नुकसान आंखों को हो सकता है।
1: यानी कि चश्मा हम एक बार खरीदते हैं तो चश्मा काफी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन लेंसेस में ये बात नहीं है, उसे समय समय पर बदलते रहना जरूरी है।
0: जरूरी है, उसे समय समय पर बदलना जरूरी है। उसको लेंस को आंख से निकाल के भी एक सॉल्यूशन में रखा जाता है, ये नहीं कि कहीं भी रख दिए, कोई भी पानी में रख दिए, तो उससे भी आंखों में और ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है।
1: यानी उसके लिए अलग से एक लोशन भी आता है
0: हाँ, एक
1: जिसपे।
0: सॉल्यूशन रहता है जिसमें
1: जी
0: आप
1: जी
0: उस लेंस को रखना होता है।
1: क्या जो बच्चे हैं उनकी आंखों में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर सिर्फ बड़ों के लिए है ये?
0: नहीं, ये सिर्फ जो मैच्योर लोग हैं, जो समझ सकते हैं कैसे यूज़ करना है, उन्हें ही पहना जाना अच्छा रहता है।
1: अभी के समय में देखा जाए तो लोग चश्मा छोड़कर अब कॉन्टैक्ट लेंस की तरफ ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं, तो इस्तेमाल करने के बाद इसके फायदे और नुकसान क्या-क्या हैं?
0: नहीं, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस जिस तरह प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसमें भी आपको साल में एक बार डॉक्टर से मिल के अपना पावर चेक कराना है, जो सही पावर है उसी का कॉन्टैक्ट लेंस पहने, फिर उसका रख रखाव का तरीका अगर आपने सही से समझा है तो लंबे समय तक यूज़ करने पर भी कोई नुकसान नहीं होती है आँखों को।
1: चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस में दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है आंखों के लिए?
0: देखिए, बेहतर तो चश्मा ही होता है, कॉन्टैक्ट लेंस सब कोई नहीं मैनेज कर पाते हैं, बहुत लोग उनको उसको पहनना नहीं सीख पाते हैं। और चश्मा क्या है, आप डेली यूज़ है, आप जैसे भी रखो, रफली भी उसको रख सकते हो, उसके रख रखाव में उतना स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैक्सिमम लोग चश्मा ही यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस में थोड़ी दिक्कत तो बहुत लोगों को आती ही है। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो इतना भी बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस का यूजेस नहीं है, मैक्सिमम लोग चश्मा ही पहनते हैं।
1: और जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरह से इनका सही इस्तेमाल करें कि उनकी आंखों में किसी तरह की समस्या नहीं उत्पन्न हो इसके लिए?
0: पहले तो जैसे मैंने बताया कि हैंड क्लीन करके प्रॉपर

0: वे में उसको पहनना है, और उसमें लेंस में लिखा हुआ रहता है कि आपको कितने दिन तक यूज़ करना है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और तीसरा एक समय समय पर आंखों का चेक कराते रहें साल में एक बार।
1: एक और सबसे आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हमने अभी बात की कांटेक्ट लेंस के बारे में, कितने तरह के होते हैं और इसके बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हमारी आँखें, तो हम आज के समय में अपनी आँखों का किस तरह से देखभाल करें, कैसे उसको अच्छा रख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: सबसे पहले तो आजकल जो स्क्रीन टाइम मोबाइल टाइम है उसको कम करना होगा, जितनी ज़रूरत है उतना ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ड्राई आई का प्रॉब्लम है, लोगों को पावर बढ़ते जा रहा है, और बच्चे उसका दूसरा साइड इफेक्ट है कि एडिक्ट होते जा रहे हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों के हाथ से तो मोबाइल लेना है, बच्चों को मोबाइल नहीं देना है। दूसरा, आप अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल या स्क्रीन टाइम है ही, अगर आपका वो जॉब ही है कि आपको कंप्यूटर पे काम करना है, तो जो ब्लू फिल्टर एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं उसको यूज़ करें, वो आँखों के लिए अच्छे होते हैं। दूसरा, बच्चों को हरी सब्जियां खिलाएं, गाजर खिलाएं, पपीता खिलाएं, तो वो सब अच्छा रहता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनका एक बार ज़रूर आँखों की जांच कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि बच्चों को आँख का पावर है और वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है।
1: जी, तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, उसके लिए आपको धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी हमारे साथ में थे डॉक्टर अमित कुमार जायसवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ। इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए, तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की। आज हम बात करेंगे चिकित्सा विज्ञान के एक ऐसे महान वैज्ञानिक और चिकित्सक की जिनके शोध और आविष्कार ने आधुनिक चिकित्सा को नई दिशा देने का काम किया। इयान डोनाल्ड को चिकित्सा जगत में अल्ट्रासाउंड तकनीक के जनक के रूप में जाना जाता है। इनकी खोज ने गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की देखभाल को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने का काम किया। इयान डोनाल्ड का जन्म 27 दिसंबर सन 1910 को स्कॉटलैंड में हुआ था। इनका पूरा नाम इयान डगलस विल्सन डोनाल्ड था। बचपन से ही ये अत्यंत जिज्ञासु और मेधावी छात्र के रूप में काफी आगे रहते थे। इन्हें विज्ञान, तकनीक और नई चीजों को समझने में विशेष रुचि रहती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्कॉटलैंड में हुई और बाद में इन्होंने प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज से चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की। अध्ययन के दौरान ही इन्होंने चिकित्सा अनुसंधान के प्रति गहरी रुचि विकसित कर ली और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने ब्रिटिश वायुसेना में चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं भी दी। युद्ध काल में इन्हें विभिन्न प्रकार की तकनीकों और उपकरणों के साथ काम करने का अवसर मिला। इसी अनुभव ने इनके मन में चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग का विचार पैदा कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद इन्होंने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना शुरू किया और महिलाओं तथा नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। 1950 के दशक में चिकित्सा विज्ञान में गर्भस्थ शिशु की स्थिति का पता लगाने के लिए सुरक्षित और प्रभावी साधनों की काफी कमी थी। डॉक्टरों को केवल अनुमान और सीमित जांचों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए इयान डोनाल्ड ने ध्वनि तरंगों के उपयोग पर शोध करना शुरू किया। इन्होंने उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली अल्ट्रासोनिक तकनीक से प्रेरणा लेकर इसे चिकित्सा के क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया। इनकी मेहनत रंग लाई और इन्होंने अल्ट्रासाउंड तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तकनीक के माध्यम से पहली बार गर्भ में पल रहे शिशु की तस्वीरें प्राप्त करना संभव हो गया। डॉक्टर अब बिना किसी दर्द, ऑपरेशन या हानिकारक विकिरण के गर्भस्थ शिशु की स्थिति, विकास और स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। ये चिकित्सा विज्ञान की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में मानी गई। इयान डोनाल्ड ने केवल गर्भावस्था संबंधी जांच तक ही अपने शोध को सीमित नहीं रखा। इन्होंने ये भी कर दिखाया कि अल्ट्रासाउंड तकनीक शरीर के भीतर मौजूद ट्यूमर, सिस्ट और अन्य असामान्य संरचनाओं की पहचान में भी उपयोगी साबित हो सकती है। आज हृदय, गुर्दे और शरीर के कई अन्य अंगों की जांच में अल्ट्रासाउंड व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये सब इनके दूरदर्शी अनुसंधान का परिणाम ही माना जाता है। इनकी खोज ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में काफी योगदान दिया है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान होने वाली कई जटिलताओं का समय रहते पता लगाया जा सके, इसके लिए उचित उपचार संभव हो, इसमें इनका काफी योगदान है। आज दुनिया के लगभग हर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन एक आवश्यक चिकित्सा उपकरण बन चुकी है। अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए इयान डोनाल्ड को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। चिकित्सा जगत में इन्हें अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अनुसंधान, शिक्षण और रोगियों की सेवा को समर्पित कर दिया। 9 जून सन 1987 को इनका निधन हो गया, लेकिन इनकी खोज और योगदान आज भी मानव की सेवा कर रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इनका नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। जब भी किसी गर्भवती महिला की अल्ट्रासाउंड जांच होती है, तब कहीं ना कहीं इयान डोनाल्ड के महान कार्यों की झलक इसमें दिखाई पड़ती है। इयान डोनाल्ड का जीवन हमें ये सिखाता है कि विज्ञान और मानव सेवा का मेल समाज के लिए चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। अब बारी है खोज और आविष्कार की, और आज खोज और आविष्कार में हम जानकारी देने वाले हैं आपको OMR क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में। तो हम आपको बता दें कि OMR वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं, सर्वेक्षणों और विभिन्न प्रकार के डेटा संग्रहण में कार्य के लिए OMR का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से विशेष रूप से तैयार किए गए फॉर्म या उत्तर पत्र पर लगाए गए निशानों को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा और विश्लेषित किया जाता है। जब किसी परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तरों के सामने दिए गए गोले को काले या नीले पेन से भरता है, तो OMR उस मशीन में भरे हुए गोलों को स्कैन करके उनकी जानकारी कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करती है। आज देश की अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाएं
विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं और विद्यालयों की कई परीक्षाएं भी OMR सीट के माध्यम से ली जाती है। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी आती है, सटीकता और पारदर्शिता भी बनी रहती है। इसके अलावा OMR तकनीक का कार्य करने का तरीका काफी सरल माना जाता है। सबसे पहले अभ्यर्थी उत्तर पत्र में सही विकल्प के सामने बने गोले को भरता है। इसके बाद OMR स्कैनर उस शीट को स्कैन करती है और स्कैनर प्रकाश किरणों की सहायता से ये स्पष्ट पहचानता है कि कौन सा गोला भरा गया है और कौन सा खाली है। भरे हुए स्थान प्रकाश को कम परावर्तित करते हैं, जबकि खाली स्थान अधिक प्रकाश परावर्तित करते हैं। इसी अंतर के आधार पर कंप्यूटर सही जानकारी प्राप्त कर लेता है। OMR के कई महत्वपूर्ण लाभ भी हैं। सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे हजारों उत्तर पत्रों का मूल्यांकन बहुत कम समय में किया जा सकता है। मानवीय त्रुटियों की संभावना भी इसमें कम रहती है और परिणाम अधिक सटीक हो जाते हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में डेटा को जल्दी और आसानी से संशोधित भी किया जा सकता है। यही कारण है कि शैक्षिक संस्थानों, सरकारी विभागों और निजी संगठनों में इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है। हालांकि OMR का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां भी आवश्यक मानी जाती हैं। उत्तर पत्र में गोले को पूरी तरह भरना चाहिए। एक से अधिक विकल्प भरने पर उत्तर पत्र गलत माना जा सकता है। उत्तर पत्र को मोड़ना, फाड़ना या उस पर अनावश्यक निशान बनाना भी स्कैनिंग प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए परीक्षा के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। OMR तकनीक का उपयोग केवल परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। इसका उपयोग सर्वेक्षण फॉर्म, जनमत संग्रह, उपस्थिति रजिस्टर, ग्राहक प्रतिक्रिया फॉर्म और विभिन्न प्रकार के डेटा संग्रहण कार्यों में भी किया जाता है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। और आज के समय में हम अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो आज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, लेकिन OMR का इस्तेमाल आज भी अलग अलग परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में की जाती है। OMR आधुनिक तकनीक का एक महत्वपूर्ण और उपयोगी उदाहरण है, जिसने परीक्षा और डेटा प्रबंधन की प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और विश्वसनीय बनाने का काम किया है। डिजिटल युग में इसकी उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में भी ये तकनीक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और हम में से बहुत सारे लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाएं दी होगी। कंप्यूटर के एग्जाम यानी कि CBT बेस्ड एग्जाम होने के पहले OMR पर ही परीक्षा देने के लिए किया करते थे और आज भी CBT एग्जाम्स होने के बाद भी आज OMR सीट का इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो अगर आप कभी परीक्षा देने जाएं तो OMR के बारे में पूरी जानकारी रखें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आज हमने ढेर सारी बातें आपसे कर ली, ढेर सारी जानकारियां आपको दे दी और अब हमारी स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है। लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जीवन में कुछ भी बड़ा करना हो, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना हो तो सपने हमेशा उससे बड़े देखें, ताकि आप मेहनत पूरी तरीके से करें और आप जिस जगह पहुंचना चाहते हैं वहां समय से पहुंच पाएं। इसलिए मेहनत, लगन और ईमानदारी, ये तीनों चीज आपको हमेशा खुद के अंदर बनाए रखनी है और जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है, तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा और अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विज्ञान जगत, चर्चा थी एसी का उपयोग सावधानी से करें, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम साज सरगम। 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 5:02 पर युवा भाइयों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। चर्चा होगी आरंभिक कंपेयरिंग इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, युवाओं के लिए खेल का महत्व। प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडेय। 5:30 पर आप सुन सकेंगे श्रमिक लोक। चर्चा होगी भीषण गर्मी में श्रमिक अपनी सेहत का रखे ख्याल, हुनर का हाथ तरक्की के साथ अपने कौशल को पहचाने और आगे बढ़ें। कार्यात्मक साक्षरता, कार्यस्थल पर सुरक्षा और प्रबंधन की शिक्षा, तनाव मुक्त और शांत मन के लिए योग। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 का समय होगा किसान वाणी का। चर्चा होगी किसान क्रेडिट कार्ड। आज की बात होगी गर्मियों में पशु पक्षी की देखभाल एवं रोग प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नंदिनी कुमार। भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल, नई उम्र की नई फसल। प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की।

6:32 पर प्रसारण होगा हमारी दुनिया का। चर्चा होगी छोटा परिवार विकास का आधार, हिंदी वार्ता बच्चों को स्वावलंबी बनाए, वार्ताकार सुगंधा विहंगम, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर जिले में आजकल आदिवासी अखाड़ा का समय होगा। 7:15 पर चर्चा होगी नशे की लत से बचने के उपाय, जल संरक्षण का महत्व, प्रस्तुतकर्ता प्रदीप कुमार। 7:45 पर आप सुनेंगे सुर भारती वार्ता आयुषो वेद आयुर्वेद, वार्ताकार होंगे डॉक्टर रामाशीष पांडेय। 8:00 प्रसारण होगा फिल्म संगीत का। 8:10 पर विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। 8:45 पर समाचार संध्या। 9:00 न्यूज़ @9।

रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार, 9:30 पर कंट्री वाइड इनसाइट्स का समय होगा, 9:45 पर जो कि हमारे दिल्ली प्रसारण से प्रसारित किया जाएगा। सुनहरी यादें आप सुन सकेंगे रात्रि के 10:00, 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, गिटार पर राग बागीश्री में अलाप और गत, मध्य लय की रचना झप ताल में व द्रुत लय की रचना तीन ताल में निबद्ध होगी। कलाकार होंगे पंडित विश्वमोहन भट्ट। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और रात्रि 11:10 पर मीडियम वेव सभा समाप्त।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही क्षणों में। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत का कार्यक्रम साज सरगम में। दोस्तों, आज की शाम को हम सुरमई बनाते हैं इन प्यारे प्यारे गीतों से। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आज मौसम ने बड़ा ही अच्छा करवट बदला। इस भीषण गर्मी में बड़ी राहत मिली हमें, तो चलिए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, इससे आपको और राहत मिलेगी।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साज सरगम। अगला गीत है फिल्म मिर्जापुर से, आवाज है रोमी की, गीत को लिखा है गिन्नी दीवान ने, सुरों से सजाया है पार्थ पारेख ने।

कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत है फिल्म गुरु से, जिसे गाया है A.R. रहमान, चिन्मयी, मुर्तुजा खान और कादिर खान ने। बोल है गुल

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है आज का कार्यक्रम साज सरगम। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।

कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने आज विरोध मार्च निकाला। ग्रामीणों की योजना मुख्यमंत्री आवास घेरने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मोराबादी में रोक दिया। राजधानी रांची समेत राज्यभर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक महिला समेत 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से 76 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर, 63,000 रूपये नकद और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। और मौसम विभाग के तात्कालिक पूर्वानुमान के मुताबिक रांची समेत 16 जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाई बासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:02 हो चुके हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में यानी संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में युगल गीत। संध्या 5:30 पर समय होगा किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी। आज चर्चा का विषय है किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी। मनोरंजन किया जाएगा संथाली लोकगीत से कलाकार शंकर चंद्र मुर्मू एवं साथियों के स्वरों में। साथ ही साथ मौसम की जानकारी दी जाएगी और आप सुनेंगे भेंट वार्ता और कार्यक्रम के में बाजार भाव भी आप जानेंगे और कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे कुरमाली लोकगीत कलाकार रीना महतो एवं साथी की आवाज़ों में। संध्या 6:00 मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे संथाली कार्यक्रम। संध्या 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार संध्या 7:00 और उसके बाद जिले में आजकल। संध्या 7:10 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र जहां से आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विषय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सात बजकर 45 पर समय होगा श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। रात्रि 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि 10:00 समय होगा गजलों के कार्यक्रम महफिल का। रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11:00 हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 11:05 पर और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्य

कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का चाई बासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। आज का गुलदस्ता हमने आपके लिए सजाया है युगल गीतों से। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत, आवाज़ अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, फिल्म है सड़क, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज़ों में फिल्म परिचय का ये गीत बोल गुलजार के, और अब सुनवाते हैं फिल्म साजन का ये गाना आवाज़ अलका याग्निक और कुमार सानू की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म साजन का ये गीत, आवाज अलका याग्निक और कुमार सानू की। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में युगल गीत, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम गुलदस्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं फिल्म साथी का ये गीत, आवाज अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

इन्हीं गीतों के साथ ही श्रोताओं, आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आशा मनी गोप और
1: ठाकुर चंद्र मुर्मू का जोहार।
0: कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। ठाकुर जी, कार्यक्रम में आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी हाँ
0: ठाकुर जी, कार्यक्रम में हम प्रतिदिन कुछ नई जानकारियों के साथ हमारे किसान भाई बहनों के बीच उपस्थित होते हैं।
1: जी हाँ,
0: आज हमारी चर्चा का विषय है किसान क्रेडिट कार्ड।
1: सही बात है, और चर्चा हम लोग इस तरह से करते हैं कि ताकि हम और आप तो समझ ही रहे हैं, बाकी जो हमारे जो श्रोता हैं वो भी जाने कि कुछ कुछ चर्चा विषय पर हम जिस पर बातें करते हैं क्या है क्या नहीं विषय करके।
0: बिल्कुल,
1: तो आज का जो विषय है हमारा ये किसान क्रेडिट कार्ड। जी हाँ किसान भाइयों, ये किसान क्रेडिट कार्ड एक तरह का ऋण है जो कि हम आसानी से किसान भाई ले सकते हैं। और ये इस किसान क्रेडिट कार्ड का कहने का मतलब, जिसको हम लोग संक्षेप में कभी कभी गांव देहात में वैसे ही बोलते हैं, केसीसी कार्ड भी बोलते हैं, तो ये जानकारी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ है कि हम छोटे मोटे खर्चा जैसा बीज खाद और हमारा जो मशीनरी चीज़ है ट्रैक्टर वगैरह का रख रखाव के लिए, या तो फिर हमको कीटनाशी दवा के लिए, या और भी खेती से संबंधित जो हमारे पास समस्या होता है उन समस्याओं को निदान के लिए हम केसीसी के लोन ले सकते हैं। जी हाँ, और इसके तहत मिलने वाली जो राशि है आपको, ये 50,000 से लेकर के 3,00,000 रुपये तक आप लोन ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड में, है ना सर जी?
0: बिल्कुल।
1: और ये जो है ये सालाना ब्याज दर से आपको मिलता है, मतलब सालाना 7% ब्याज दर में आपको दिया जाता है। और अगर आप लोन समय पर चुका देते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि आपको 3% की छूट भी आपको मिलती है
0: जी।
1: तो किसान भाई ये चीज़ को थोड़ा समझना होगा। बाकी जो ऋण के जो लोन हम लोग लेते हैं अन्य बैंकों से, ये एक तरह से कहा जाए तो निजी काम के लिए, उसमें सूद या तो इंटरेस्ट जो होता है ना ज़्यादा लगता है, इसमें बहुत कम है, सालाना 7%। और इसका लगभग जो ड्यूरेशन होता है 5 साल का होता है। 5 साल तक में अगर आप चुका दिए राशि को, फिर से आप आपको ये किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आपको फिर से ऋण दिया जा सकता है।
0: बिल्कुल ठाकुर जी, और इसमें वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंक शामिल है। देखा जाए तो यह योजना बहुत ही अच्छी योजना है, और इसका लाभ हमारे किसान भाई बहन जरूर लें, क्योंकि इससे हमारे किसान भाई बहनों को कृषि कार्य में काफ़ी मदद मिल रही है।
1: सही बात है।
0: और खाद, बीज, पंप सेट, जैसे मवेशी खरीदना है, इन सब के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
1: सही बात है, और वो तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मतलब और भी चीज़ के लिए, कृषि कार्य के लिए जो भी हम लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो ये आप इस लोन से, इस रसीद से आप जो है ना, आप अच्छा खासा आप इससे लाभ ले सकते हैं। और ये आपको बिना गारंटी के, होता है ना एक बिना वारंटी के, बिना गारंटी के आपको ये लोन दिया जाता है। वो भी एक लिमिट है, मतलब 1,60,000 तक जो होता है ना बिना गारंटर के आपको लोन दिया जा सकता है। तो ये तो आपको हम लोग बात कर ही चुके हैं कहाँ कहाँ किया जा सकता है इस पैसों का इस्तेमाल का विषय पर। तो ये जैसा बीज हुआ, उर्वरक हुआ, और कीटनाशक दवा खरीदने के लिए, और विशेषकर कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर हुआ, पंप हुआ, की मरम्मत और रख रखाव के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फसल कटाई के बाद खर्चों एवं घरेलू ज़रूरतों के लिए भी हम लोग इसको कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी हम दूसरा खेती करते हैं, पशुपालन या तो फिर डेयरी मत्स्य पालन या तो फिर मुर्गी पालन वगैरह करते हैं, तो इसके लिए भी हम ये केसीसी द्वारा से लोन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल, देखा जाए तो सभी तरह से इसमें काफ़ी सुविधा मिल रही है, और हमारे किसान भाई बहन इस योजना का लाभ जरूर से जरूर ले।
1: सही बात है आशा जी, तो क्यों ना थोड़ा सा इस चर्चा के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और सुनते हैं पहले ये जरूरी संदेश।
2: और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के

0: बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में। जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
1: किसान भाइयों बहनों, आइए इस संदेश के बाद पुनः हम कार्यक्रम में वापस आते हैं और सुनते हैं मनोरंजन के तहत संथाली लोकगीत शंकर चंद्र मुर्मू और साथियों के स्वर में।

0: किसान भाई बहन, अभी हम लोग मनोरंजन कर रहे थे संथाली लोकगीत से शंकर चंद्र मुर्मू और साथियों के स्वर में। आइए इस मनोरंजन के बाद सुनते हैं पुनः जरूरी संदेश।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
2: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
1: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
3: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
1: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
4: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मील चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
1: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
5: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
1: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
6: मैं APO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
1: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
7: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही हैं, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
1: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
8: किसान मान धन योजना
9: मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: फसल बीमा कर।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: किसान भाइयों बहनों, अभी हम लोग जानकारी ले रहे थे जरूरी संदेश का, ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज एक भेंटवार्ता। और भेंटवार्ता का विषय है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं। और भेंटवार्ता कर रहे हैं अमित गोप और उनसे बातें कर रही हैं आशामणि गोप जी। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
5: प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाई बहनों को दीजिए।
6: मेरा नाम अमित गोप है, गांव बींस।
5: आपका हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोहार।
6: जोहार।
5: सबसे पहले आप हमारे किसान भाई बहनों को बताइए प्राकृतिक संसाधन क्या है।
6: प्राकृतिक संसाधन है मतलब मिट्टी, वायु, जल, कोयला, अन्य सारे चीजें
5: जी जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त है।
6: जी जी।
5: कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि में किस तरह इनकी भूमिका है, आप हमारे किसान भाई बहनों को बताइए।
6: कृषि में इनका तो बहुत अहम भूमिका है, जिसकी मिट्टी किसानों के लिए हमारे लिए सोना है।
5: जी।
6: तो जैसे मिट्टी को जितना अच्छा हम लोग बचा कर रखेंगे, उसको प्रदूषित होने से बचाएंगे, उतना ही हमारे लिए लाभदायक है।
5: बिल्कुल।
6: मिट्टी में हम लोग को रासायनिक खाद का यूज नहीं करना चाहिए। रासायनिक खाद यूज करने से मिट्टी हमारे जो पोषक तत्व खराब हो जाती है। हमें चाहिए कि गोबर खाद यूज करें और जैविक खाद का अच्छी तरह से यूज करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी अच्छे से बचा रहे।
5: बिल्कुल
6: जी।
5: आप अपने खेत में किस तरह के खाद का उपयोग करते हैं?
6: मैं तो अपने खेत में गोबर खाद का यूज करते हैं और एक हमारे यहाँ है एक ढेंचा का पौधा होता है, उस ढेंचा का पौधा को बीजा छिड़क देते हैं हम लोग। कुछ पौधा उगने के बाद उसको हम लोग ट्रैक्टर के हाल से चलाते हैं, तो वो हमारे खाद ही काम करते हैं।
5: अच्छा, ये पौधा जो बताए, ये इसमें बीज दे देने से ये क्या होता है?
6: इसमें हम बीज छिड़क देते हैं धान कटाई के बाद, जैसे फर्स्ट वर्षा होती है, पौधा उगाता है उसमें।
5: अच्छा।
6: तो पौधा उगाता है तो फिर उसको हम लोग ट्रैक्टर या हल से उसको मिट्टी में पूरा मिलाते हैं, तो एक तरह से वो हमारे खाद के काम करते हैं।
5: अच्छा
6: जी जी।
5: और इसमें जो मिट्टी में रहने वाले जीव है, कीट है, उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचता है या नहीं?
6: वो तो इनके लिए अच्छा है।
5: अच्छा।
6: रासायनिक खाद से तो जो हमारे मिट्टी में जो रहते हैं वो कीड़े मकोड़े जो भी हो वो तो मर जाते हैं। जैसे हम रासायनिक खाद यूज करते हैं खेत में, बारिश होती है, बारिश का पानी कहीं नाला या नदी में जाता है, तो वो पानी भी इसके कारण प्रदूषित हो जा रहा है।
5: जी।
6: मछली वगैरह वो सब किए जाते हैं ना,
5: ये तो
6: इसीलिए हम लोग को गोबर खाद यूज करना चाहिए ताकि हम मिट्टी के पोषक तत्व अच्छे से बने रहे। और सारा चीज हम लोग अन्य कुछ भी हम लोग फल वगैरह कुछ भी धान लगा, जैसे धान सीजन आ गया
5: जी,
6: तो हम गोबर खाद का यूज करेंगे तो उतना अच्छा हमारा धान होगा। और रासायनिक खाद यूज करेंगे तो मिट्टी तो टाइट हो जाती है, हल चलाने में तकलीफ होता है। उस तरह से हम लोग को गोबर खाद यूज करना चाहिए, जो मिट्टी से बचाव हो सके उसका।
5: बिल्कुल। मिट्टी की पोषक तत्व बनी रहे इसके लिए फसल चक्र भी अपनाते हैं आप?
6: जी जी।
5: मिट्टी की जांच आप लगभग कितने साल के अंतराल में करवाते हैं अपने खेत की मिट्टी की जांच?
6: मैं तो हर 2 साल में मिट्टी की जांच करवाता हूँ।
5: जी
6: जी। उस हिसाब से मैं अपना यहाँ पर जैविक खाद यूज करता हूँ।
5: अच्छा।
6: रासायनिक खाद का तो एकदम हम लोग ना ही यूज करते हैं।
5: अच्छा।
6: क्योंकि रासायनिक खाद यूज करने से हमारा खेत टाइट हो जाता है, पोषक तत्वों पर खराब हो जाती है।
5: और इसके साथ ही जो फसलों का उत्पादन है वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन वो मिट्टी की पोषक तत्व है वो कमी हो जाती है।
6: हाँ, पूरी कमी हो जाती है। वो रासायनिक खाद से जो हम लोग जो फसल आता है वो इतना जल्दी खराब भी होती है।
5: हाँ।
6: और जैविक खाद से यूज किया जो फसल आता है वो थोड़ा अलग टेस्ट है, और जो रासायनिक खाद वाला वो अलग टेस्ट होता है।
5: हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये जो जैविक खाद बताया, तो जैविक खाद का निर्माण आप किस तरह से करते हैं?
6: मैं अपना घर में करता हूँ, पहले इसको गड्ढा करके गोबर को दबाता हूँ, कुछ दिन बाद उसको फिर उसको निकाल के सुखा करके
5: जी
6: फिर से उसको खेत में छिड़कते हैं।
5: अच्छा। और इसमें अलग से और क्या क्या मिलाते हैं?
6: कुछ नहीं, इसे जैसे हम लोग हरा खाद ही बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधा को उसको एक जगह ला कर डालते हैं, फिर उसको भी गोबर मिला करके एक तरह का हरा खाद का काम करता है।
5: हाँ, और ये फसलों के लिए तो बहुत ही अच्छा है।
6: जी जी, बहुत अच्छा है।
5: हम मिट्टी की ही बात कर रहे हैं, तो मिट्टी संरक्षण बहुत ही जरूरी है, तो इसके लिए किस तरह के उपाय को अपनाना बहुत जरूरी है?
6: देखिए, मिट्टी संरक्षण बहुत जरूरी है, जैसे कि हम लोग अभी बारिश में एक मिट्टी कटा होता है, वो भी उसको बचाना है, वो भी एक मिट्टी संरक्षण आती है
5: जी।
6: तो उसके लिए हम लोग साइड साइड में जो भी है पेड़ पौधा भी लगाना जरूरी है, साथ साथ में मिट्टी कटाव ना हो। और मिट्टी के संरक्षण बोला जाए तो उसको हम लोग अच्छी तरह से उसको बना कर रखे, रासायनिक खाद का यूज ना करें, गोबर खाद का यूज करें, ताकि उसमें हम लोग मिट्टी का ये बने रहे।
5: बिल्कुल, उसकी पोषक तत्व है वो बनी रहे।
6: जी जी,
5: और इससे जो फसलों का उत्पादन है वो भी काफी अच्छा होता है।
6: काफी अच्छा होता है। जी जी,
5: हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्राकृतिक संसाधन है उन सबका हम संरक्षण किस तरह से करें?
6: कोई भी संसाधन है हमारे प्रकृति से मिला हुआ है
5: जी,
6: बहुत ही अनमोल है हमारे लिए। जैसे कि अभी मिट्टी, मिट्टी को हम लोग प्रदूषित होने से बचाए, जैसे कि मिट्टी में कोई भी हम लोग प्लास्टिक वगैरह कोई भी वो ना डाले, उसमें मिलावट ना करे, जैसे कि पेड़ पौधा हो उसको कटने से बचाए, उस तरह से बहुत कुछ हमारा तरीका है बचाने के लिए संसाधन को
5: जी।
6: जिसे पानी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए हम लोग को, घर का नाला कचरा डायरेक्ट नदी में नालों में नहीं डालना चाहिए, खासकर मिट्टी को, ये हमारे अनमोल है।
5: बिल्कुल,
6: किसान भाई बहनों के लिए मिट्टी को बचाना बहुत ही जरूरी है।
5: बिल्कुल, क्योंकि इसी से हम सारे फसल प्राप्त करते हैं।
6: जी जी, जैसे अभी धान बुआई का टाइम आ गया अभी, तो मिट्टी में जैसे कोई भी खाद वाल डाला जाता है तो उसमें

0: पत्थर कंकड़ जो भी हो या फिर प्लास्टिक वगैरह हो, सारा को हटा के अच्छे तरह से उसको तैयार करना होगा ताकि मिट्टी हमारा अच्छे से बचाव हो सके।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो जो मृदा का संरक्षण है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं।
0: जी,
1: अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि मिट्टी बचाओ, जल बचाओ तो हमारा कल है, और मिट्टी को अच्छे तरह से देखभाल करें, उसको स्वस्थ रखें तो हमारे फसल भी उस तरह से अच्छा आएंगे।
1: जी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, इस विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए हम आपका पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोहार।
0: जोहार।
2: किसान भाइयों बहनों, अभी हम लोग जानकारी ले रहे थे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, और ये जानकारी दे रहे थे अमित गोप जी, और उनसे बातें कर रहे थे आशामणि गोप जी। तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिर पुनः एक बार जरूरी संदेश।
3: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव, यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है?
2: किसान भाइयों बहनों, इसी संदेश के साथ ही आज का किसान वाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल हम और जानकारियां लेकर के आएंगे, नई जानकारियों को आपके साथ हम साझा करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ कुछ वैसा विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए अभी। तो आज तक के लिए मुझे यानी कि ठाकुर चंद्र मुर्मू
4: और आशामणि गोप को दीजिए विदा। जोहार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जमशेदपुर में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत झारखंड समेत देश भर के 11 करोड़ किसानों को साल

झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। सिमडेगा जिले के कोलीबिरा थाना क्षेत्र में आज एक चार पहिया वाहन के पेड़ से टकरा जाने से उस पर सवार पति पत्नी और तीन बच्चों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स लाया जा रहा है। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद तेज हवाओं और गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य।
5: निय संदेशानम आंजम आबो अंधविश्वास एवं ग्रामीण जीवन इदी खातिर मन प्रोफेसर BN टुडू थिकिना थुथी।

0: ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱚᱱᱫᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱢᱟᱱ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱚᱨ ᱵᱤ ᱮᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱚᱱᱫᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱟᱥ ᱮᱵᱚᱝ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱭᱟ
2: हिंसा से सनी राहें ना अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गयी है।
4: ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱞᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱚᱱᱢᱟ ᱤᱧ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱨᱟᱱᱛᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱥᱚᱵ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱯᱟᱥ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱵᱚᱞᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱟᱞᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱡ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱚᱨᱱᱟ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱟᱶ
5: ᱵᱟᱲᱜᱮᱨᱟ ᱟᱲᱠᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱡᱚᱝᱜᱚᱞ ᱜᱟᱭ ᱦᱚᱛᱚ ᱟᱹᱣᱠᱟ ᱠᱟᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱦᱮ ᱞᱚᱜ ᱟᱹᱣᱠᱟ ᱩ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱦᱮᱱᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱦᱮ ᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱥᱩᱱᱮ ᱯᱟᱨᱞᱤ ᱚᱦᱮ ᱪᱟᱞᱛᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱟᱢᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱩᱢᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱚᱭ ᱦᱮᱱᱟᱭ ᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱯᱟᱨᱤᱵᱟᱨ
6: ᱱᱟᱢ ᱦᱮ ᱨᱟᱱᱵᱟᱞᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱜᱟᱶ ᱵᱟᱨᱮ ᱦᱚᱛᱚ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱜᱷᱚᱨ ᱟᱭ ᱢᱮ ᱟᱢᱨᱮ ᱜᱷᱚᱨᱮ ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱫᱩᱠ ᱠᱮ ᱵᱟᱛ ᱦᱚᱭ ᱛᱚ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱛ ᱦᱚᱭ ᱡᱟ ᱦᱮ
7: ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱫᱚ ᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱢᱥᱚᱭ ᱟᱱᱤᱛᱟ ᱛᱟᱢᱥᱚᱭ ᱵᱷᱩᱨᱩᱯᱟ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱥᱚ ᱫᱩᱠᱩᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧᱟᱹ ᱡᱟᱯᱟᱢ ᱢᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱢᱮ ᱨᱮ ᱚᱣᱟ ᱵᱤᱴᱟᱱ ᱠᱟ
8: ᱟᱧᱟᱱ ᱛᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱩᱢᱵᱟᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱛᱩᱢ ᱜᱩᱢᱨᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱟᱧᱟᱱ ᱦᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱫᱚᱢᱨᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱩᱰᱚ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱛᱩᱢ ᱠᱤᱛᱢᱟᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱢᱮᱱᱤᱢᱮᱱ ᱩᱲᱤᱲᱤ ᱱᱟ ᱵᱟᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚᱴ ᱠᱤᱧ ᱫᱩᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱨᱛᱤ ᱠᱚᱞᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱞᱚ ᱮᱢᱤ ᱞᱟᱲᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱢᱟ ᱵᱩᱨᱩᱨᱮᱱ ᱜᱚᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱛᱮᱨᱮ ᱠᱟᱠᱟ ᱜᱩᱝ ᱦᱚ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱢᱤᱭᱟ
9: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱩᱱᱤ ᱥᱩᱨᱮᱱ ᱛᱮ ᱟᱯᱤᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱮ ᱟᱨ ᱡᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱚ ᱛᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱦᱩᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱠᱟᱜ ᱮ ᱩᱣᱟᱜᱮ ᱵᱤᱴᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱮᱱᱠᱟ ᱟᱞᱮ ᱟᱭᱟ ᱱᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱢ ᱟᱯᱤᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ
3: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
10: ᱵᱚᱭᱟᱢ ᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱡᱚᱭᱵᱤᱠ ᱨᱤᱥᱛᱟᱹ ᱛᱮ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱦᱟᱨᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱜᱳᱫ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱵᱟᱛᱥᱟᱞᱞᱮ ᱚᱱᱛᱚᱨᱜᱚᱛ ᱯᱷᱚᱥᱴᱟᱨ ᱠᱮᱭᱟᱨ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱞᱟᱞᱚᱱ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱫᱮᱠᱷᱨᱮᱠ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱸᱥᱟᱹ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱚᱣᱟ 18 ᱵᱚᱨᱚᱥ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱤᱪᱪᱷᱩᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱚᱥᱛᱷ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ 115 ᱵᱚᱨᱚᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ 115

अभी आप सुन रहे थे संथाली कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहयोग की जताई अपेक्षा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, केंद्र से राज्य को मिल रहा पर्याप्त आर्थिक सहयोग। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त झारखंड पर दिया जोर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में प्री मॉनसून बारिश से गर्मी से राहत। पड़ोसी राज्य बिहार में मॉनसून की दस्तक, राज्य में 2-3 दिनों में करेगा प्रवेश। और श्रीलंका दौरे के लिए अंडर-19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा। झारखंड की कुमारी पलक का चयन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है

0: भी उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड के संसाधनों को मानव पूंजी से जोड़कर राज्य को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भागीदार बनाया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जमशेदपुर में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में राज्यों को पर्याप्त केंद्रीय सहायता राशि दी जा रही है। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत झारखंड समेत देश भर के 11 करोड़ किसानों को सालाना 6000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है।
1: 81 करोड़ों को केंद्र द्वारा यहाँ पर राशन भेजा जाता है, क्रियान्वयन करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। और 7 करोड़ लोगों को 5 करोड़ से अधिक की राशि आयुष्मान कार्ड से लोगों को सुविधा दिया जा रहा है। अगर गरीब कल्याण की बात करें तो सरकार ने जन धन योजना के माध्यम से 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं।
0: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में नेशनल टास्क फोर्स की बैठक से टीबी मुक्त भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वालों की मदद से वर्ष 2029 तक टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा।
2: टीबी कैसे दूर करें इस राज्य से, क्योंकि झारखंड में अभी तक लगभग 6000 से अधिक पेशेंट हैं हमारे। तो मैंने तमाम जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रियों से मैंने आग्रह किया है कि आपके गांव में भी यदि कोई पेशेंट है तो उनको आप लोग चिन्हित करें। हम लोग मुफ्त में टीबी का इलाज करते हैं, 1000 रुपया हम लोग हर मंथ मिलाते हैं, जो पेशेंट आते हैं उनको देते हैं। जहाँ तक कि हम लोगों ने एक फ्रेंड जो बीमारी टीबी ठीक हो जाता है वैसे मरीज को हम लोग गाँव में भेजते हैं। तो आप प्रचार करो कि कहाँ पर आपका पेशेंट है, ये बीमारी जो है लाइलाज बीमारी है, इसे घबराना नहीं है। और भारत सरकार ने कहा था कि 2025 में टीबी मुक्त करेंगे, लेकिन 2025 हुआ नहीं, हम लोग 2029 में हम झारखंड को टीबी मुक्त झारखंड हम बनाएंगे।
0: राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में आगामी 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम जारी होंगे। नाम वापसी के अंतिम दिन आज किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। अब झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया 15 जून तक जारी रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अब तक राज्य के 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। 23 मई को अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित होने के बाद 14 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपनी मैपिंग कराई। श्री कुमार ने अनमैप्ड मतदाताओं से जल्द मैपिंग प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य के 3 प्रतिष्ठित लोक कलाकारों को संयुक्त रूप से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इन कलाकारों में बूटन देवी, सोमवारी देवी और सरायकेला खरसामा के छऊ मुखौटा शिल्पकार सुशांत कुमार महापात्र शामिल हैं। श्री महापात्र ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है।
3: मैं एक पारंपरिक घराना का हूँ, ये मुझे तो दुख भी लग रहा है कि मुझे बहुत देर में मिला हूँ। मैं छो के लिए समर्पित हूँ, छो के लिए काम करूंगा। ये हमारा परंपरा है, 3-4 पीढ़ी हो गया। मेरे बड़े चाचा थे जो सरायकेला के जगन्नाथ मंदिर को जितनी भी मूर्तियां हैं वो बनाए हैं।
0: पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट के बीच केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्थिर है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,40,00,000 एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग हुई, जिसके आलोक में 1,49,00,000 की डिलीवरी की गई।
4: देश में क्रूड, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्टेबल है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम क्षमता पर चल रही हैं। पिछले 3 दिनों में 1.40 करोड़ एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग रिसीव हुई है। इसके अगेंस्ट 1.

0: 49 करोड़ डिलीवरी की गई है। अफवाहों से बचे, जहां पर भी संभव हो वहां अल्टरनेट सोर्स का उपयोग करने का प्रयत्न करें।
1: प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जामताड़ा जिले के लोगों विशेषकर गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जरूरतमंद लोग जन औषधि केंद्र में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है, जो गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ सस्ती और बहुत अच्छी दवाइयाँ मिल रही है, जो गरीबों को बहुत आवश्यकता अनुसार काम कर रही है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद करती हूँ।
1: रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने आज विरोध मार्च निकाला। ग्रामीणों की योजना मुख्यमंत्री आवास घेरने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मोराबादी में रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि राज्य सरकार विकास के नाम पर किसानों की कृषि योग्य भूमि छीन रही है।
3: रिम्स 2 बने, आदिवासी समाज कभी भी विरोध नहीं किया है। पूरे झारखंड में यहाँ पे आदिवासियों का ही जमीन दिया गया है। 11-12 में भाजपा सरकार इस जमीन को छीन रही थी, उसके बाद शिबू सोरेन जी उनके आह्वान पे ये जमीन को बचाया गया है। अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है हमारे दिसुम गुरु को, ये नगड़ी का जमीन 227 एकड़ खेतीहारी जमीन को पूरे आदिवासी समाज को उपहार देने का काम करे।
1: राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद तेज हवा और गरज के साथ प्री मॉनसून की मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पड़ोसी राज्य बिहार में आज मॉनसून ने दस्तक दी है। इसके राज्य में 2-3 दिनों में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार 17 जून तक तेज हवा और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की महिला चयन समिति ने 3 T20 श्रृंखला के लिए आज 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी। श्रीलंका दौरे के लिए घोषित 15 सदस्यीय इस टीम में झारखंड की कुमारी पलक का भी चयन हुआ है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहयोग की जताई अपेक्षा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा केंद्र से राज्य को मिल रहा पर्याप्त आर्थिक सहयोग। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त झारखंड पर दिया जोर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में प्री मॉनसून बारिश से गर्मी से राहत। पड़ोसी राज्य बिहार में मॉनसून की दस्तक, राज्य में 2-3 दिनों में करेगा प्रवेश। और श्रीलंका दौरे के लिए अंडर-19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा, झारखंड की कुमारी पलक का चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं, एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद आपका।
4: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूँ, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूँ। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
5: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 3री बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूँ, मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
4: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो दो साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर है आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
5: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मपत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा, अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
4: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूँ। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
5: सबके साथ है, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा ना चुनाव की बात, ना मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
4: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
5: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
4: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी है?
5: देखिए, एक तो संकट है
4: जिसको इतिहास याद रखेगा,
5: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब किसान महिला नौजवान सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
4: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी।
5: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
4: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
5: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
4: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
5: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई। दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी? लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
4: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
5: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
4: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
5: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
4: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
5: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
4: नहीं, तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन को?
5: हकीकत तो यही, जनता जान देखिए, हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, NDA शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
4: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
5: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
4: नहीं, लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
5: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूं।
4: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
5: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इम्पोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी, कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
4: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगह लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या एलपीजी के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
5: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों और अपील की, उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूँ तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
4: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
5: तत्काल ही देखिए, मैं तो उनकी हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे, और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे। प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहेंगे। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए, कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
4: अच्छा,
5: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
4: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
5: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की, और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
4: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
5: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं।
4: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है, और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें, और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
5: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
4: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
5: अलनीनो के भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण हैं, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये एआई का इस्तेमाल, मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो एआई के ऐसे अनेकों उपयोग हैं जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने एआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया, उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है, हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
4: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
5: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदेव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
4: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
5: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश इसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ, और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
4: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरे वेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
5: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थीं रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
7: ।26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है, पूरी आधुनिकता के साथ में ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट।

0: में भारत
1: धन्यवाद।
0: किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई, या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, और इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए, या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की, जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सबको अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
0: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहाँ किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
1: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और भोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
0: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेनजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
1: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइस रॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ हैं, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5,000 वर्ष पुरानी साइट है। 5,000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ। और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी। तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
0: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेनजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपने ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम बच्चे थे। और आज जब आप इस दौर में हैं, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, एक मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है, तो तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
0: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है। तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे, और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे, और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
0: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म है ससुराल। इस गीत को सुनना चाहा है बरा निमडी चाईबासा से तुलसी पथिक मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। न्यू कॉलोनी निमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू खुशी, अभिष, अनीस, अमित, मनीष और मुन्ना। सरायकेला गांव कीता से राधा कृष्णा गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, सुमित गोप, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक, आशीष, विक्की, शुभम, विनोद, राजू, राजन और माहिर गोप। आप सबों की पसंद पर सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म ससुराल का ये गाना।

और अब सुनवाते हैं आशा भोसले के स्वर में फिल्म सनम तेरी कसम का ये फरमाइशी गीत। इस गीत को सुनना चाहा है सरायकेला पारापुर देसाउली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी सुरुमानी मुंडरी हीरामानी मुंडरी हिमांती मुंडरी डोबरो साजन सिद्धेश्वर पारापुर शिवाजी डोबरो मुकेश कुशल मुंडरी जानुम सिंह मुंडरी सिद्धि बोस सोना बाबू और एफएम शिवा मुंडरी जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया नौनिध भाटिया पप्पी भाटिया गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत श्रीमती बासंती भगत मृणाल कांति भगत चांदनी भगत मास्टर आयुष भगत राजकुमार भगत कॉलेज रोड घाटशिला से सोना रूपा मोनिका शिवम मौसमी संतोष आनंद माहौलडिया सोनुआ से नंदकिशोर महतो राधामणि महतो रविवारी बंदनी आयुष महतो गीतेश महतो संतोषी दीपक संतोष राहुल अन्नू तन्नू भाई नंदू महतो मेन रोड सोनुआ से गुरुचरण नायक अनुसुईया नायक सागरिका नायक देवाशीष नायक गुलशन नायक। आप सबों की पसंद पर सुनवाते हैं फिल्म सनम तेरी कसम का ये फरमाइशी गीत आवाज़ आशा भोसले की।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म आरजू का ये गीत। पसंद आप सबों की है। पोंडा काटा से नरसी महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हरसमनी महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदनी महली, साजीव महली, विजय बेसरा, बड़ा बम्बू सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, श्यामदेव नायक, देवेन बाबू, ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा बासंती, अन्नू, रमेश बनमाली, सिद्ध कुमारी, पूजा और पूरा बेसरा परिवार।

लता मंगेशकर के स्वर में गाए इसी गीत के साथ ही श्रोताओं आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं और अब समय है फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सुनवाते हैं ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म सलामी से, आवाज़ कुमार सानू और अलका याग्निक की, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का। इस गीत के फरमाइश करता है न्यू कॉलोनी टुंगरी से रश्मिता महतो, स्वाति महतो, विश्वजीत महतो, अभिजीत महतो, आर्या, वीर, तेजस, प्रकाश जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, उर्मिला देवी, वैष्णवी, रीना जायसवाल। तूरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, अर्पिता कुमारी, लाडो, सुमित ठाकुर, भोला रज्जक, बुच्ची और खुशी कुमारी। वसुंधरा कॉलोनी सेंट टोला चाईबासा से भोला राम मधुर, बेबी देवी, नताशा। बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार, पवन, मीना, पवन। दुर्गाई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभनी से सी आर कुलकर्णी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मिक्का बीरक, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही।

और अब सुनवाते हैं येसुदास के स्वर में फिल्म सफ़ेद झूठ का ये फरमाइशी गीत। सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल राठौर, राजनांदगांव से यूकुब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, छोटा निमडी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक, कोमल, रोहन, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से सुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, रुचि, विनीत आहूजा, निमित और विशाल गगनेजा, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, राउफ भाई, साहिद भाई, गांधीबाग अकौला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा।

अभी आपने सुना फिल्म सिर्फ तुम का ये गीत आवाज़ कुमार सानू और अलका याग्निक की। इस गीत को सुनना चाहा था कुचाई ग्राम इचाहतु से गोलाराम लोबादा लुदरी लोबादा सोमनाथ पूर्णिमा लालमुनि बिंजना और समस्त लोबादा परिवार। ग्राम लोसोदीकी से कोमल महतो गोविंद जीतू साईमान महतो बेडी से हुकुम करमकार सुनीता करमकार हार्दिक करमकार प्राची करमकार तन्नु करमकार कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय प्रांजल राय शेरपुरा गाजीपुर से अवधेश राय श्रीमती प्रीति राय नवनीत राय शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार रोशन कुमार बंसीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा और लबी श्रीवास्तव। आकाशवाणी के चाय बासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा और अब सुनते हैं ये संदेश।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जा...

0: స్వయం ఈ కట్టుబడే భారతీయ సేనా.
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ.
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है. नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है. इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है.
3: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नेहर में ना बले नौ नुकन परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बले रुड़ तब बनवे आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना जंगल गया है तो आउका कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए
6: ये तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनिता तमसोए भरूपा ऐसा करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में इरिया तपा में इरिया वाह बेटा निका
7: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा दो पटन पटन तुम कितने कोड़ा मैंने में बुरी ने बागिया तो कि जब दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमा दूर रंग गई तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काका मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम कहीं ना मिले आप ही लेता ना.
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी. साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है. आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं. हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें. इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं.
9: इन संदेशों के बाद श्रोता

कार्यक्रम रजनीगंधा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में फिल्म सुहाग का ये गाना, बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के फरमाइश करता है बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे, चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा कल्पना महतो, मनमोहिनी महतो और दीनबंधु महतो, बड़ा बाम्बो से मोइना महतो, डिम्पी महतो, राहुल महतो, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना और विपुल कामड़े, टुंगरी चाईबासा से सुशील कुमार सिंह, संध्या देवी, प्रियंका, पंडित आर के पाठक, रिया प्रिया पाठक और श्रीमती अनीता मिश्रा, धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी, मास्टर सानू ध्रुवंशी, रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया। आप सबों की फरमाइश पर सुनवाते हैं फिल्म सुहाग का ये गाना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की।

और अब सुनवा रहे हैं फिल्म सर का ये फरमाइशी गीत कुमार सानू की आवाज़ में। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं। ग्राम परजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंदसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक आराध्या चंदसौलिया, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवहानकर, राही सरिता गंवहानकर, प्रिंस एकांश गंवहानकर। सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। सहावर टाउन, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, सीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। रेलवे रोड, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी और डी एच बच्चन।

श्रोताओं कुमार सानू के स्वर में गाए इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम रजनीगंधा अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और कुछ ही पलों में आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं, बचपन, युवा अवस्था, काम जीवन और बुढ़ापा।
2: यूथ वर्किंग लाइफ टू ओल्ड एज।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेट टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सिटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र वर्तमान में बढ़कर 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और

0: जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहिमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जान को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एस्टिका में पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफालत के तहत मुल्क के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत को उजागर किया और दुनिया की बेहतरीन अमल आवरियों बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने भारत पेशरफ्त कर रहा है। मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वजीर आजम ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इसके ताल्लुक से बरामदात मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया, जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शनाख्त कायम कर रहा है, और रियासतों को तरगीब दी कि वो इस तरक्की से रूनुमा होने वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वजा करें। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी ने आज कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की गरज से बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोख के मौजू पर और रोजगार जैसे कलीदी शोबों का अहाता किया गया। जनाब लहरी ने कहा कि नीति आयोग ने वज़राए आला के बामकसद नजरियात और उनकी मुतालिका रियासतों में किए जा रहे काम से इस्तिफादा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने इस मीटिंग से तफसीली खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि एक बेहतर तालीम याफ्ता और हुनरमंद आबादी भारत की तरक्की के लिए लाजमी है। मगरबी एशिया के बहरान से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब लहरी ने कहा कि वजारत खारजा सूरत हाल को मुनासिब तरीके से हैंडल कर रही है, जबकि अफरादी कुव्वत की तरक्की पर मरकूज तवज्जो में कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि तबादला ख्याल के दौरान शमसी तवानाई, जोहरी तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग पर भी खास तौर पर तवज्जो दी गई। नीति आयोग के रुकन राजीव गौबा ने कहा कि तबादला ख्याल में एक और कलीदी शोबा मनसूबा बंद शहरकारी था। उन्होंने वाजे किया कि नीति आयोग से एक एजेंडा तैयार करने के सिलसिले में मुख्तलिफ वजारतों के साथ कि आसाम नागालैंड सरहद पर सहूलियात शुरू की जा सके। इस मुआहदे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा रिव्यू
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے اس معاہدے کو ایک تاریخی قدم قرار دیا جو تعاون پر مبنی وفاقیت اور قومی مفاد کے جذبے کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے خطے میں تیل اور گیس کی تلاش کو خاطر خواہ فروغ ملے گا اور اس طرح بھارت کی توانائی کی یقینی فراہمی کو استحکام ملے گا اور درآمدات پر انحصار میں کمی آئے گی۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اس سے شمال مشرق میں امن اور استحکام میں بھی بہتری آئے گی، اس سے سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا ہوں گے۔ بھارت نے آج امریکہ کے چارج ڈی افیئرز کو طلب کیا اور عمان کے ساحل اس حملے میں 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے خطے میں جہاز رانی پر جاری حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ اس کا تعلق جاری تنازع سے ہے۔ انہوں نے اس طرح کے واقعات پر فوراً روک لگانے پر زور دیا اور خطے میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ خلیجی ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم آر مہاجن نے کہا کہ حکومت مغربی ایشیا کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور بھارتی مشنوں سے 24 گھنٹے ہیلپ لائن تال میل قائم کی۔

0: रहे हैं एनडीए अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो आशुतोष जी, जैसा कि कल हमने सुना कि प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था और जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात की, देश के अंदर जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो विकास के मुख्य आयाम हैं और वैदेशिक संदर्भ में भारत की क्या मुख्य भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पिछले 12 साल में सरकार ने काम किया है और देश को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की, आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
1: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की उपलब्धियां गिनाई। ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी। एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं वो, कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलाव कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो जो पहले की सरकारों में 60 सालों में जिस तरफ हमारा, जिस सेक्टर पे फोकस नहीं होना चाहिए था और नहीं गया, उसको कैसे सुधारना है, वो एक लेवल वो था कि कैसे बदलना है। और जो तीसरा जो एक लेवल था जो मुझे दिखा और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात भी की, वो ये है कि भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसके मन और दिमाग में कुछ चीजें असंभव सी थी जो कि बैठी हुई थी कि ये चीजें असंभव है, बाकी चीजें तो हम करेंगे। उस असंभव को पार करना, जिसमें कि उन्होंने फिर वो 370 और 3 तलाक जो इस तरीके की बात की, जो समाज से भी जुड़ते थे, देश की सुरक्षा से भी जुड़ने वाले इशू थे और जो आम जन की जनभावना से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो, तो ये 3 तरीके के बदलाव जो पिछले 12 साल में हुए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने इस पे बहुत खुल के बात।
0: आशुतोष जी, अगर हम खासतौर से बात करें आर्थिक प्रगति की, हम सभी देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, निवेश की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, और खासतौर से पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक जगह बनाई है, और न सिर्फ एक जगह बनाई है, हमने लगातार कोशिश की है इस सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम बाकी दुनिया से एक कदम आगे चलें। तो आइए सुनते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती, दुनिया भारत में वैसे

0: सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है
1: और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना, हमें ये समय गंवाना नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, यही समय है, सही समय।
0: हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है।
1: हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है।
2: तो आशुतोष, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगर हम देखें कि किस तरह से जो देश का विकास हुआ है और जो 2047 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, क्योंकि 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के हो जाएंगे, और उसमें आर्थिक विकास से लेके जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो सोशल इंक्लूजन की बात है, सामाजिक समावेश की बात है, और एक अच्छे प्रशासन और गुड गवर्नेंस की बात है, इस बारे में आप आशुतोष जी और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
3: आज देश को किस चीज की जरूरत है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो बात हो रही है ना कि पश्चिम एशिया का संकट आया और पूरे विश्व पे इस संकट का असर दिख रहा है, यहाँ पर विपक्ष में बैठे लोग कुछ ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं, ऐसा लगता हो कि सिर्फ इंडिया का वो एक इशू है। लेकिन फिर भी जो समस्या अभी आपको दिख रही है, ये और कम दिखती अगर कुछ कदम पहले उठाए गए होते, जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई जो सप्लाई चेन में जो इंडिया कई बार दिखता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, ये कोविड के टाइम में भी ये चीजें दिखी थी और अभी भी चीजें दिख रही है। वहां कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका में इंडिया को आना है? एक टाइम आप याद कीजिए कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि दवाइयां, और ये 80-90 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे उस समय कुछ इस तरीके से निर्णय लिए गए कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से घुस जाए, और हम वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उस समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा करना था वो नहीं किया गया। अब शुरुआत हो रही है इसकी, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे तरीके से किया और मुझे वो चीजें बहुत सही लगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों नहीं भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसकी बात उन्होंने की। ये आत्मनिर्भरता ही जो है वही कड़ी है और वही आप समझिए सबसे बड़ी कुंजी है, जिसमें कि आप वित्तीय रूप से बहुत संबल, जो बात हो रही है ना बार बार विकसित भारत बनने की।
2: जी,
3: विकसित भारत ऐसा नहीं है कि एक शब्द में जुड़ के कहीं खत्म हो जाए, कई लेवल पे जो स्टेप्स लेने हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि भाई ये ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आज से 8-9 साल पहले तक आप याद कीजिए तो यहाँ आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो भी फोन है वो बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अब स्थिति बदली हुई है कि आज अमेरिका वहां के जो यूजर है उसमें से एक फोन मेड इन इंडिया हो रहा है। ये जो बदलते हैं माहौल, उसकी बात उन्होंने की कि हमें किस तरीके से आर्थिक पावर के रूप में उभरना ही पड़ेगा, यही सबसे बड़ी कुंजी है। उसी के साथ समाज का भी ग्रोथ होगा। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें वेलफेयर स्टेट का जो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, आप जान रहे हैं कि आज के दिन हम लोग करीब करीब 4-4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं, आखिर कहाँ से कर पाएंगे अगर जब तक आप एक आर्थिक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे? और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के लिए इसकी भी जरूरत है, और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी लेना चाहिए जो एक हेल्दी कंपटीशन की बात है।
2: जी जी,
3: कि भाई ये हेल्दी कंपटीशन सिर्फ राज्य और राज्य में ना हो, ये हेल्दी कंपटीशन गांव से शुरू हो सकता है कि एक गांव दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम अपने गाँव को कैसे ज्यादा बेहतर बना पाए, एक शहर दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम कहाँ पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। और उन्होंने कहा कि राज्यों को तो ये कम्पीट करना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में हु विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट होगा।
2: तो आशुतोष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए और प्रधानमंत्री ने सहभागिता की बात भी की, क्योंकि उनका ये मानना है, जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, कि सारी जनता मिलके और सारे राज्य मिलके ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जन विश्वास की जो बात है, जन भागीदारी की बात है, इस पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
0: देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजैक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया,
1: देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
2: आशुतोष जी, जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा हाउसिंग की बात की, वित्तीय समावेशन की बात की, सफाई का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। खास तौर से जिस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं और काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
3: न सिर्फ गरीबी से, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये फिर से उस गरीबी के दलदल में ना जाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है जब आप इस तरीके की योजनाओं पे काम करते हैं, स्लिपेज की बात, कि आपने कुछ चीजें ठीक की और वो फिर से धीरे धीरे वहीं चला जाए, तो वो प्रयास वहां पर विफल होता है। और देखिए, ये गरीबी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कारक हुआ करता था वो है बीमारी, कि एक बार कोई घर में एक बीमार हो गया किसी गरीब के घर और वो फिर से लोन और इसके दुष्चक्र में फंसता हुआ वो वहीं जाता था। बीमारी को लेकर के सरकार ने पहले ही एक कदम उठाया, आज से 5-6 साल पहले जब आयुष्मान योजना की बात हुई थी, उससे बहुत सारी चीजें सुधरी थी। और ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा अभी आ रहा है कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो नियो मिडिल क्लास में और थोड़ा सा उससे नीचे में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनकी आकांक्षाएं और बढ़ रही हैं। ये आकांक्षा बढ़ना ही जो है विकसित भारत के लिए जरूरी है।
2: जी जी, और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से कुछ समय पहले हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हम बहुत ही त्वरित गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। और जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किस तरह से एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां गरीबों के सपने भी पूरे हो पाए। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: जैसा कि हमने सुना, आशुतोष जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जब 100 साल पूरे हों देश के, तो एक नए तरह का भारत हो जो बहुत विकसित हो और विकसित श्रेणी और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए। आप इस बारे में क्या और कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
3: ये जो विकसित भारत की कल्पना की गई, और उसी समय ये भी है कि विकसित भारत क्या होगा। विकसित भारत का अर्थ ये है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत खड़ा होगा। भारत की तुलना आप किसी छोटे कंट्री से नहीं कर सकते। बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहां की जनसंख्या आप देख लें तो वो पूरे के पूरे भारत में समाएंगे। तो यहाँ की सोच अलग है और उसी तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही दिशा सही है
2: जी।
3: थोड़ी गति की बात है जो उन्होंने कही, जहाँ हमें गति और बढ़ानी है, और जिसमें सबके प्रयास की बात की उन्होंने, ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है दिशा और गति दोनों मिलकर जो है सो इच्छित परिणाम के देंगे।
2: आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से सरकार ने विकास के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं वो समय पे लिए, चूंकि राजनीतिक स्थायित्व तो है और सरकार के पास ये इच्छा शक्ति है कि वो देश को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
2: आशुतोष जी, आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि देश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो ये सरकार करेगी, जिससे कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाए।
3: मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा
2: जी।
3: 370 की बात इन्होंने की, और आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय में किस तरीके की बातें कही जा रही थी। मैं अभी अभी कश्मीर से लौट के आया, बारामूला और शोपियां जैसे जिले, आप वहां भी

0: खुलेआम घूम सकते हैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से, वो भी कश्मीरी नहीं, आप बाहर से जाकर के घूम सकते हैं और सुरक्षित घूम सकते हैं, लोग खुश हैं। उसी तरीके से जो तीन तलाक वाली जो बात कही, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी देते हैं, सरकार का काम ये भी होता है कि वो इस तरीके के प्रयास करे कि समाज में भी बदलाव आए।
1: जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड।

ये आकाशवाणी का चाई बासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। समय है गज़लों के कार्यक्रम महफिल का। कार्यक्रम महफिल में सुनवाते हैं चंद गज़लें नुसरत फ़तेह अली खां के स्वर में।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं गज़लों का कार्यक्रम महफिल में नुसरत फ़तेह अली खां के स्वर में चंद गज़लें। और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम महफिल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गज़ल।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत अनुराधा पौडवाल और साधना सरगम की आवाज़ों में। फिल्म है सौतन की बेटी। गीतकार सावन कुमार और संगीतकार वेद पाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म पहचान का ये गीत, आवाज़ मुकेश और सुमन कल्याणपुर की। और अब सुनवाते हैं महेंद्र कपूर के स्वर में ये गीत।

enough.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म संबंध का ये गीत, गीतकार ओपी नैयर। और अब सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म सुहागन का ये गीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम सुरों के रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवाते हैं येसुदास के स्वर में फिल्म स्वामी का ये गीत।

श्रोताओं, लता मंगेशकर के स्वर में गाए इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है,